मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तीसरी तिथि तदनुसार 24 जून सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 और 45

0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समाचारों के तुरंत बाद FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल

0: भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की दुर्घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन। अभिमान किसी को ऊपर उठने नहीं देता और स्वाभिमान कभी भी किसी व्यक्ति को झुकने नहीं देता। ये था आज का चिंतन। अब श्रोताओं प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

प्रभु के प्रति भक्ति भाव रखना और अच्छे कर्म करना मनुष्य को हमेशा ही मानसिक शांति प्रदान करते हैं।

कर्म का अधिकार मनुष्य के पास है, लेकिन फल ईश्वर देता है। अतः कर्म को सच्चे मन से करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन में उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल ही घटित होता है। अच्छे कर्म है तो फल अच्छा होगा, अन्यथा मानव को पछताना पड़ेगा।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान, स्वर है रंजना जोगलेकर का।

भरत तथा शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में राम वनगमन, महाराज दशरथ का स्वर्गवास आदि जो भी घटनाएं घटी उनके फलस्वरूप भरत का हृदय ग्लानि से भर गया था। शोक और परिताप की ऐसी अवस्था में इस मनस्थिति से उबारने के उद्देश्य से मुनिवर वशिष्ठ ने सांत्वना भरे जो उपदेश दिए प्रस्तुत प्रकरण में आप उनका वर्णन सुनेंगे। मुनि का उपदेश था, स्वर्गवासी महाराज का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग कर प्रजा का पालन करो। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करते देख श्री राम और जानकी भी सुख पाएंगे। श्री राम के लौटाने पर राज्य उन्हें सौंप कर स्नेह भाव से उनकी सेवा करना। मंत्रीगण ने भी भरत को गुरुवर वशिष्ठ की आज्ञा पालन करने का परामर्श दिया। माता कौशल्या ने अपने हृदय में धीरज धारण कर मुनिवर वशिष्ठ के उपदेशों का आदर करने का अनुनय किया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान स्वर था रंजना जोगलेकर का। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों और भाइयों राम राम। भाइयों कृषि की बातों में जिक्र करेंगे पशुओं के लिए खनिज और मिश्रण के महत्व के बारे में। एक दौर था जब बुजुर्ग कहें भी पुराना जो खान पान था वो अच्छा होया करता हमारे लिए। इसी तरह भाई हम पशुधन की बात करा तो पशु अपनी मर्जी तो भाई जो हमारे चरगाह होया कर दी, खेत खाली रहा कर दे, साडू की जमीन होंगी डोलिया पे नाक्या पे धान्या पे हम पशुओं चराह करते, अपना मन मर्जी का जो भाई घास है फूस है पशु खा कर दे। इसी तरह भी जो बाखरम दिया कर दे घर का भी चना होंदा, नाज की जो गुणवत्ता थी नाज में जो पोषक तत्व थे वो बढ़िया थे, जो हमारे जोड़ थे तालाब थे उनका बढ़िया पानी जो खेतम भी राम बरसे का पालर पानी जिसने हम कहा करते वो पिया कर दे। अपनी मन मर्जी तक खूब यानी कि भी चार पाया का हमारा जानवर है खूब पदाड़े मारना घूमना फिरना अपनी मस्ती में जो हमारे पशु हैं जो खान पान सारा सब कुछ एकदम मजामा बढ़िया था। लेकिन जिस तरह हमारा स्वास्थ्य कहीं फिलहाल ख़राब है आज तक कुछ साल पहले की 30 साल पहले की हम बात करा तो वही ना किसी डॉक्टर के गामा बीपी के अंतर थे ना कोई शुगर की समस्या थी, बेरा ही नहीं था लोगों ने भाई शुगर के बीमारी हो है कोई छिद्दा चढ़ा केस होया करता, ना कोई कैंसर का पेशेंट था ना मतलब कोई भी जो भयानक बीमारी वो नहीं थी, तनाव भी इतना नहीं था। लेकिन आज हम देखा कि हमारा स्वास्थ्य धीरे धीरे करके बहुत बड़ी बड़ी बीमारी मार लाग रही है। इसी तरह जो खान पान की वजह से जो हमारा पशुधन है भाई पशुओं में फूल दिखाने की समस्या समय से पहले यानी कि ओछी बहन की जो समस्या है पशुओं आफन लाग जाए हैं ढंग तक जुगाड़ नहीं पाते भाई उदास रही जहाँ कई बार हम देखा भी अपनी मर्जी से पशु कई बार जो चारा है वो ठीक से नहीं खा पाता, जेर नागेरन की समस्या है या फिर भाई ब्यांत मारन की मोटी समस्या है। इसके अलावा हम देखा कि भी 2-3 महीने सही दूध दे है फिर पशु अपना भाई लात मारन लाग जाए है। तो ये सारी जो बीमारी है वो खान पान थे और जो हमारा पशु का रख रखाव है उस तो जुड़ रही हैं भाई। देखो ना तो वो चरगाहें रही ना वो हमारे खेत खाली रहे भी हम दोबारा से उन्हें जो एक प्राकृतिक जो अपना दूब थे ये भी हमने जरूरत पड़ेगी भी पशु ने जो हमने पोषक तत्व देने चाहिए वो भाई खनिज है मिश्रण है उनका माध्यम तक हम दें। जो भी हमारे पशु हैं वयस्क पशु हैं चाहे भाई 1-2 साल का काटा है बाची है 50

0: 10 ग्राम जोखन इस मिश्रण है वो हम अपने पशु ने भाई से चाट में घेर के दें, या फिर भाई अपना जो चून में मिला के दें या सानी के माध्यम दे दें वो खिलावें, और एक जो संतुलित चारा दाना है वो पशु ने दें, क्योंकि उसमें भी जो खनिज मिश्रण है वो मिले है। जिस तरह भी 33 किलो अपना गेहूँ है, जो भी हमारा मौसम का मौका का अनाज है, 33 किलो में हम खड़ मिला लें, जिस तरह के भी अपने सरसों की खड़ है या फिर भी अपने बिंदौड़ी खड़ है, 33 किलो चना का जो फोल्डर है, चावल की पालिस है, जो दलहनी फसल है उनका भाई कोई बूर हो या फिर मरचून का छानस है वो हम मिला लें, और इसमें 1 किलो मोटा नून और 1 किलो जो खनिज मिश्रण है वो इसमें डाल के, फिर भी पशु का जो वजन है या फिर भाई पशु दूध कितना दे है उसके हिसाब से जो भी खनिज मिश्रण है और जो संतुलित चारा दाना है वो हमने देना है। और भी जो भी हम पशु चारा दें हैं, बेहरा चारा की हम बात करें तो बेहरा चारा 1 लाने दें, उसमें सूखा चारा हम मिला लें। जब भी हम सानी घेरें तो एक टाइम भाई एक मुट्ठी जो बड़ा नून है, जो मोटा नून है, उन्हें कूट के हम उसमें मिला दें, और कोई भी सा हिसाब किताब हमने दिखे भाई पशु ठीक से जुगाड़ता नहीं, उदास है, आँखें हम पानी पड़े है, या फिर पशु बेचैन है, तो जो भी अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक है उसकी हम सलाह लें। पशु का भाई जो खान पान है उसका हम विशेष ध्यान रखें, हरे चारा के साथ सूखा चारा भी हम मिलावें, और जिस तरह भी जो दलहनी फसल है जई की हम बात करें, दो एक बूटे भी अपने बरसम के ले लिए, दो एक बांत एक भी अपना जई की ले ली, इस तरह का जो एक चारा है संतुलन भरा, जिस तरह भी पशु उसने रज के भी खाओगा, और जो भी जिस तरह भी अपना चून का छानस है वो पशु के लिए बहुत बढ़िया है, और कोई भी हम अनाज दें हैं पशु ने उसको ना बिल्कुल एक जो बारीक आटा है वो उसका ना करें, थोड़ा सा मोटा मोटा हम दल दें, और इसके अलावा भी सर्दी के मौसम में गुड़ दे दिया भाई पशु ने, ठीक ठाक उसका ठान रखें, खान पान का ध्यान रखें, और जो खनिज है मिश्रण है वो समय पर उचित मात्रा में पशु ने दें, तो पशुधन से हम बढ़िया लाभ ले सकते हैं। तो भी कृषि की बातों में इतना है, आपका दिन शुभ हो।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि की बातें, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, उसके बाद हिंदी समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है।

0: रविवार को रासलाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई भी व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमेरिका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. National security advisors and senior security officials from the BRIC nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism, cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisors meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA, Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. He expressed condolences over the loss of lives of Indian nationals in the accident at Ras Laffan Industrial City in Qatar on Sunday and conveyed his wishes for the speedy recovery of those injured. Mr. Modi thanked the Qatari leader for his words of sympathy for the affected families and appreciated the prompt medical assistance extended to the injured. The two leaders also reaffirmed their commitment to ensuring the well-being and safety of their citizens and reiterated their solidarity and support for each other. India has strongly criticized Pakistani Defense Minister Khwaja Asif's remarks over the situation in Pakistan-occupied Kashmir, saying these remarks are desperate attempts by the neighboring country to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. Addressing media in New Delhi, Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, New Delhi categorically rejects these fabricated claims with the contempt they deserve.
2: The ongoing protests in Pakistan-occupied Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long policy of systemic economic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses.
1: On India-UAE defense partnership, the spokesperson said India's relationship with UAE in recent several years has seen a major upswing, in which the defense partnership also plays an important role. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has called for stronger multilateral cooperation to build resilient economies, accelerate sustainable development and ensure inclusive growth. Addressing the Global Convergence for Growth Summit virtually in New Delhi yesterday, she said that while prosperity and challenges are shared in an interconnected world, the consequences of conflicts and uncertainty fall disproportionately on developing countries

शाम 5:30 बजे युवा संसार कार्यक्रम में डॉक्टर आशा शर्मा से करियर काउंसलिंग कार्यक्रम में वनस्पति शास्त्र का अध्ययन और रोजगार संभावनाएं इस विषय पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रातः 7:15 पर हमारे सेहत कार्यक्रम में सिरदर्द व माइग्रेन कारण उपचार व बचाव इस विषय पर डॉक्टर सुरेखा डाबला से भेंटवार्ता सुनेंगे।

सुबह सवेरे कार्यक्रम का प्रसारण रहेगा 7:35 पर प्रातः, और NCERT द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम सुनेंगे दिन में 12:30।

प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़िया, समय रहेगा दिन में 2:45 पर। दिन में 2:30 खेत खलिहान कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा गन्ना फसल की देखभाल।

शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में भेंटवार्ता एक किसान से, कार्यक्रम के अंतर्गत अनीता गौतम से भेंटवार्ता सुनेंगे। ग्रामीण संसार कार्यक्रम में शाम 7 बजे फोन इन कार्यक्रम रहेगा बालक मंडली।

श्रोतो, अब कुछ संगीत से संबंधित कार्यक्रम जिनके अंतर्गत प्रातः 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम मन भावन। दिन में 1:10 पर पत्रों पर आधारित कार्यक्रम रहेगा आपके अनुरोध पर।

एक फिल्म से कार्यक्रम का प्रसारण रहेगा रात्रि 9:15 पर। रात 10 बजे आप सुनेंगे पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत।

0: ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारी सेहत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे डॉक्टर सुरेखा डाबला से भेंटवार्ता। विषय रहेगा सिरदर्द व माइग्रेन, कारण, उपचार व बचाव।
1: आज बात करेंगे सरदर्द और माइग्रेन के बारे में। आमतौर पर लोग सरदर्द की शिकायत करते हैं, लेकिन ये पता नहीं चल पाता कि कब माइग्रेन हो गया, और बाद में पता चलता है कि माइग्रेन, तो कई बार घबराहट होती है, असमंजस होता है कि क्या बीमारी है, कैसे पनपती है ये। और इस पर आज विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ में बैठे हैं डॉक्टर सुरेखा डाबला जी। आप सीनियर प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी में और PGIMS रोहतक से आप आए हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद विनय जी।
1: तो सबसे पहले यही जानेंगे आपसे, सरदर्द और माइग्रेन
2: जी,
1: दोनों बताइए क्या होते हैं और क्या फर्क होता है।
2: सिरदर्द तो देखो आम भाषा में हमें सबको ही पता है क्या होता है ना। माइग्रेन जो है ये इसकी एक वैरायटी है।
1: अच्छा,
2: अलग अलग टाइप के मतलब सिरदर्द जो होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। माइग्रेन
1: अच्छा,
2: जो है वो सबसे कॉमन है।
1: बीच में रोकूंगा आपको
2: जी।
1: कई बार हम शिकायत करते हैं कि आगे माथे में दर्द हो रहा है, कई बार ऐसा बोलते हैं कि सर के बीच में दर्द हो रहा है, कई बार ऐसा बोलेंगे पिछली साइड में दर्द हो रहा है
2: जी जी।
1: लेकिन वो दर्द कुछ समय के लिए होता है, वो ठीक हो जाता है। क्या ये सरदर्द है या माइग्रेन है, इन सबको अलग अलग करके बताइए
2: जी। जैसे अगर हम सपोज ये कहें कि हमारे फ्रंट में सिर के अगले हिस्से में दर्द हो रहा है
1: जी,
2: तो वो जनरली जैसे डिपेंड करता है, एज पे भी कुछ चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे सपोज कोई बच्चा ये बात बताए कि भी मुझे फ्रंटल हेडेक बोलते हैं हम इसको ना, कि फ्रंट में हेडेक हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को कुछ रिफ्रैक्टरी एरर है, मतलब नजर की कुछ प्रॉब्लम है।
1: ठीक है।
2: ग्लूकोमा भी हो सकता है, नजर भी कमजोर हो सकती है, आंखों की मांसपेशियां भी कम हो सकती हैं, तो सिरदर्द का वो भी कारण है। अगर सपोज हम ये कहें कि पिछले हिस्से में दर्द है, अगेन उसमें भी ये है कि वो सर्वाइकल से भी हो सकता है, और कई बार जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो उससे भी हो सकता है।
1: ठीक है।
2: तो ये कुछ कॉमन है कॉजेज ना, जो कि फ्रंटल हेडेक या फिर जिसको हम कहें कि ऑक्सीपिटल हेडेक के कारण है ये।
1: जी बिल्कुल। और कई बार ऐसा बोलते हैं कि कान के ऊपर दर्द हो रहा है
2: जी जी,
1: सर में
2: जी,
1: जिसको बराबर के हिस्से में दर्द बोलते हैं।
2: हाँ हाँ।
1: क्या
2: हाँ।
1: वो भी आम सरदर्द की तरह है?
2: जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वो भी हाँ, कान के ऊपर दर्द होना भी एक, हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक मांसपेशियों की भी तकलीफ हो सकती है या ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है।

0: भी सेम ही कारण सेम ही होते हैं, बस टाइप ऑफ मतलब पैटर्न कह लो या फिर जो साइट है वो अलग अलग हो जाती है
1: जो
0: हेडेक की।
1: कॉमन सर दर्द होता है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें जब दर्द हो रहा है बार बार, चाहे
0: जी
1: वो एक हफ्ते में हो रहा है चाहे 2 हफ्ते में हो रहा है,
0: हाँ
1: ये
0: जी
1: आम सर दर्द है, इसके बारे में भी चिंता करने की जरूरत है ही नहीं।
0: जी जी जी जैसे हम हर बीमारी का ना एक कुछ क्राइटेरिया होता है
1: जी
0: कि भाई हाँ अगर ये चीज़ें हैं तो वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम उसको बोलते हैं। जैसे माइग्रेन है मान लीजिए,
1: हाँ
0: तो अगर किसी को सिर में दर्द हो रहा है कि सपोज अभी शुरू हुआ
1: हाँ
0: और वो हाफ साइड में है उसको सिर में दर्द,
1: हाँ
0: और साथ में कुछ आंखों के आगे, जैसे ये कहते हैं ना कुछ लोग की तारे टूटते हैं आंखों के आगे,
1: जी
0: या आंखों के आगे कुछ जैसे कुछ आड़ी टेढ़ी लाइनें आ रही हैं,
1: ठीक है
0: या किसी को ये है कि भाई लाइट से दिक्कत हो रही है सिर दर्द के साथ में,
1: जी।
0: बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है, जैसे ये कोई कहे कि ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं इस तरह का दर्द
1: अच्छा
0: तो,
1: हाँ
0: और शुरू होने के बाद में कई बार 2-3 दिन में निकल जाए, तो
1: अच्छा
0: वो उस तरह का जो दर्द होता है उसको हम माइग्रेन का हेडेक बोलते हैं।
1: जी, क्या
0: जी
1: माइग्रेन हेडेक में और लक्षण, जैसे उदाहरण के लिए
0: हाँ जी
1: आँख से पानी आना,
0: जी
1: नाक से पानी आना, या फिर उठते बैठते समय आँखों के आगे अंधेरा छाना,
0: नहीं
1: ये भी हो सकते
0: नहीं
1: हैं
0: नहीं ये
1: जी।
0: माइग्रेन नहीं है, ये तो हम माइग्रेन में हम ये बोलते हैं कि ये तो रेड फ्लैग्स हैं।
1: जी
0: अगर कोई ये कहे ना कि मुझे नाक से पानी आ रहा है, तो फिर आगे हमारा क्वेश्चन होता है कि एक नाक से आ रहा है कि दोनों से आ रहे हैं।
1: जी
0: इफ
1: बिल्कुल
0: सपोज एक नाक से आ रहा है पानी, सिर दर्द बहुत तेज है,
1: हाँ
0: और अगर हम ये जेंडर की बात करें कि कोई आदमी या मेल जेंडर का ये बताए, तो हम उसको क्लस्टर हेडेक बोलते हैं।
1: जी
0: क्लस्टर मतलब कि क्लस्टर्स में आता है, एपिसोड्स में आता है कि
1: जी
0: साल में 3 महीने तक कोई ये कहे कि यही चलता रहता है, और ये जो हेडेक होता है ना क्लस्टर हेडेक,
1: जी
0: इसको हम सुसाइडल हेडेक भी बोलते हैं।
1: अच्छा,
0: ये
1: ये
0: बहुत
1: माइग्रेन
0: सिवियर होता
1: से
0: है, ये डिफरेंट है,
1: जहाँ
0: ये डिफरेंट है।
1: जी ये
0: तो
1: अलग
0: उसमें
1: होता
0: आता
1: है
0: है नाक से पानी,
1: हाँ
0: या जैसे अगर ये कोई ये कहे कि मुझे तो सडनली नाक से पानी टपकने लग जाता है,
1: हाँ
0: जो बिल्कुल वॉटरी हो मतलब जुकाम से अलग हो, तब
1: अच्छा
0: हम उसमें फिर थोड़ा और इलेबोरेटेड मतलब हिस्ट्री लेते हैं
1: हाँ
0: कि कभी कोई चोट लगी हो या कुछ ऐसे ना, कि भाई ये पानी सीधा दिमाग से तो नहीं आ रहा, तो
1: जी
0: वो भी एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है।
1: जी
0: और अगर दोनों से आ रहा है तो फिर हमें साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम, क्योंकि हेडेक उसमें भी होता है, तो
1: बिल्कुल।
0: बहुत सारे कारण है हेडेक
1: और
0: होने
1: आंखों के
0: के।
1: आगे अंधेरा छाना,
0: ये नहीं होता माइग्रेन में, जनरली ये नहीं होता, अगर होगा तो किसी एक ही आंख से होगा, कि वो मोमेंट्री होता है
1: जी
0: कि कुछ मोमेंट्स के लिए, जैसे ये है कि जनरली माइग्रेन में जो होता है ना कि हमें फील्ड में कुछ दिखता है,
1: हाँ
0: चाहे वो लाइट हो चाहे वो आड़ी टेढ़ी लाइनें हो,
1: हाँ
0: विजन लॉस जो होता है वो थोड़ा सा मतलब बहुत रेयर वो है इसका लक्षण।
1: क्या एक और सवाल इसमें,
0: जी
1: आपने विजन की बात की है,
0: जी
1: क्या माइग्रेन की वजह से नज़र कमज़ोर होती है?
0: नहीं बिल्कुल नहीं
1: जी
0: बिल्कुल नहीं, ये तो एक नज़र कमज़ोर होने से हेडेक हो सकता है,
1: जी
0: मैं इसको इस तरह से बताऊंगी
1: जी
0: आपको।
1: बिल्कुल। तो हम कैसे इस बात को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि अब तो हमें सर दर्द है, और ये सर दर्द कब माइग्रेन में कन्वर्ट हो गया, हम इस प्रोसेस को कैसे जानें?
0: जैसे सपोज कोई यंग फीमेल है ना, ये जनरली माइग्रेन जो होता है वो यंग औरतों में होता है, ठीक है,
1: जी
0: और पहचान ऐसे पाएंगे कि एक साइड हेडेक हो रहा हो बहुत ही, हम उसको बोलेंगे कि भाई जैसे पल्सेटाइल हेडेक बोलते हैं, कि भाई ऐसे धड़ धड़ करने वाला हेडेक, जैसे इस तरह से हम बोल सकते हैं।
1: हाँ
0: एंड और उसके साथ में ये है कि भी जैसे शुरू हुआ तो वो बिल्डअप होता है हेडेक, कि
1: हाँ
0: अभी शुरू हुआ, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फॉर 72 आवर्स ये लास्ट करता है हेडेक
1: 3 दिन
0: माइग्रेन का।
1: हाँ
0: हाँ जी, तो हम ऐसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो बढ़ता है चलने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से और झुकने से, इन सब चीज़ों से अगर हेडेक बढ़ रहा है ना हमारा, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये माइग्रेन हो सकता है। और जैसे कई लोग ये बताते हैं कि भाई लाइट से भी प्रॉब्लम होती है, कि
1: जी
0: लाइट जो होते हैं लाइट सेंसिटिव होते हैं ये लोग,
1: जी
0: कोई ब्राइट लाइट से बढ़ेगा, कोई आवाज़ों से भी प्रॉब्लम होती है कि कोई
1: जी
0: बात भी ना करे, बस बिल्कुल अंधेरा कमरा हो और बिल्कुल कोई ना हो आसपास, और बस सिर चुपचाप लेट जाओ अपना,
1: जी
0: और
1: बिल्कुल
0: उल्टियाँ लगती हैं जैसे इसमें, तो
1: हाँ,
0: ये सारे माइग्रेन के लक्षण हैं।
1: माइग्रेन के लक्षण
0: जी
1: हैं ये। जब
0: बिल्कुल
1: ऐसी परिस्थिति आ जाए
0: जी
1: तो पहले समझ जाना चाहिए कि माइग्रेन हो
0: यस
1: गया
0: यस,
1: हमें।
0: क्योंकि क्योंकि इसी जब जैसे बिल्डअप हो रहा है सपोज हेडेक, तो हमें उसी टाइम पे इंटरवीन करना होता है कि कोई
1: जी
0: दवाई लेके इसको ख़त्म करो, नहीं तो पूरे 72 आवर्स लग जाते हैं, और उसमें
1: जी
0: ये है कि सारी नॉर्मल लाइफ तो हैम्पर हो जाती है ना, कोई
1: जी
0: काम नहीं कर सकता अपना डेली का, तो
1: हम
0: ये है।
1: उस विषय पर भी आएंगे आपके
0: जी
1: पास में।
0: जी
1: उससे पहले एक और सवाल इसमें,
0: जी
1: माइग्रेन ट्रिगर होता है,
0: जी जी जी
1: कई लोग कहते हैं

0: कि हमें ट्रिगर होता है
1: बिल्कुल
0: वायरस से,
1: बिल्कुल,
0: कुछ
1: हाँ जी
0: कारणों से,
1: हाँ जी,
0: क्या कारण हो सकते हैं?
1: हर किसी को ट्रिगर नहीं होता, पहली बात तो ये है। जो लोग प्रोन होते हैं इस चीज़ के लिए कि उन्हीं को ट्रिगर होता है, ठीक है। जैसे अगर सपोज किसी ने नींद सही नहीं ली, है ना, स्लीप डिप्राइवेशन हो गया
0: ठीक
1: कि
0: है,
1: नींद पूरी नहीं ले रहा कोई, रात
0: हाँ
1: रात भर जाग रहे हैं, उनको ट्रिगर हो सकता है।
0: ठीक है,
1: अगर कोई खाली पेट ज़्यादा रहता है, जैसे कई लोग होते हैं ना व्रत करते हैं, फास्टिंग रहते
0: डाइटिंग
1: हैं,
0: करते हैं,
1: यस डाइटिंग भी कह लो, वैसे भी फास्टिंग जैसे व्रत का तो हमारे यहाँ इंडिया में होता ही है,
0: हाँ
1: तो उसमें भी उन लोगों को जैसे ट्रिगर हो जाता है।
0: हाँ
1: कोई अल्कोहल कंजप्शन अगर किसी का ज़्यादा हो रहा है, टी कॉफी इंटेक भी ज़्यादा हो रहा है किसी का,
0: हाँ
1: है ना, डिहाइड्रेशन, जैसे
0: हाँ
1: गर्मियों में पानी नहीं पी रहे तो भी हेडेक ज़्यादा हो जाएगा,
0: हाँ
1: टाइम से खाना नहीं खा रहे, टाइम से सो नहीं रहे, तो पूरा चांसेस है कि ट्रिगर हो जाए। जैसे आजकल आपने देखा कि लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, है
0: हाँ
1: ना, डाइट कोक का बहुत ज़्यादा फैशन हो रहा है आजकल,
0: हाँ
1: तो उन सब चीज़ों से भी माइग्रेन जो है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, जैसे चीज होती है, चीज एक टाइप का जो वो नहीं होता पनीर जो उसमें डलता
0: ठीक है,
1: है
0: हाँ
1: पिज्जा में और इन सब में, तो
0: बिल्कुल,
1: ऐसे भी मानते हैं कि चीज वगैरह की जो चीजें ज्यादा खाते हैं तो उनसे भी ट्रिगर होता है।
0: अच्छा हम
1: जी
0: समझ गए इसको, कैफे
1: जी
0: ट्रिगर होता है।
1: जी जी
0: तो आपने महिलाओं की बात की
1: जी
0: थी,
1: जी जी
0: पुरुषों में माइग्रेन का बताइए
1: कम
0: हाल।
1: है। माइग्रेन जो होता है वो जनरली महिलाओं की ही है। जैसे हम ये मानते हैं कि 20%, 18 to 20% जो फीमेल्स होती है ना, उनमें माइग्रेन ज़्यादा कॉमन है। आदमियों में थोड़ा कम है,
0: जी
1: 5-6% के अराउंड है। फीमेल्स में इसलिए ज़्यादा है, मैं आपको बताऊं कि क्योंकि हार्मोनल शिफ्ट होते रहते हैं, है ना,
0: जी
1: एवरी मंथ। जैसे यंग फीमेल्स हैं,
0: हाँ
1: एक नॉर्मल हम ये बताते हैं, जैसे कोई सपोज मेरे पास कोई फीमेल आती है ना, तो
0: जी
1: मेरा उनसे जनरली यही होता है कि ये तो भाई चलेगा 45 साल तक, तो
0: हाँ
1: वो इसलिए क्योंकि तब तक हम पीरियड्स चल रहे होते हैं, तो क्योंकि हार्मोनल शिफ्ट जब तक चलता रहेगा ना तब तक ये होता रहेगा माइग्रेन, उसके
0: ठीक है।
1: बाद चेंज हो जाता है।
0: अब हमें पता चल गया कि माइग्रेन हो गया है हमको, धीरे धीरे हमें लक्षण पहचान में आने
1: जी
0: लगे
1: जी
0: हैं, इंटरवेंशन हम कर रहे हैं, आपके पास आ गए हैं
1: जी
0: जी, तो प्रायोरिटी में क्या लेते हैं, क्या प्राथमिकता होती है आपके पास?
1: प्राथमिकता देखो ये होती है कि जो जो बॉटम लाइन है ना माइग्रेन की, वो यही याद रखनी होती है कि रेगुलर फूड लो, स्लीप अपनी नॉर्मल लो, और स्ट्रेस कम से कम, और पानी ज़्यादा पियो,
0: जी
1: और जैसे ही हेडेक स्टार्ट हो ना उसी टाइम मेडिसिन लो। तो ये तो है कि हम ये मानो कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बता रहे हैं, जैसे
0: अच्छा
1: है ना, कई लोग फिर पूछते हैं कि MRI करवा लें, है
0: जी
1: ना, कि भाई इन्वेस्टिगेशन क्या
0: हाँ,
1: करवाएं
0: सीटी
1: जन
0: स्कैन करवाए, एमआरआई
1: जी जी
0: करवाए,
1: जी जी
0: हाँ
1: हाँ तो माइग्रेन में ये है कि भाई ठीक है कर, आजकल तो ये आप ये मान लो कि सब लोग करवाते ही हैं MRI, हमारे पास भी ऑलरेडी करवा के ही आते हैं, पर
0: हाँ
1: लक्षण जो होते हैं ना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, हम बहुत डिटेल हिस्ट्री लेते हैं,
0: अच्छा
1: तो MRI में कुछ आता नहीं है माइग्रेन में,
0: हाँ
1: है ना, जैसे कई लोग कह देते हैं हाँ नसें सूजी हुई हैं, खैर
0: हाँ
1: MRI में ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि नसें सूजी हुई हैं कि नहीं है। माइग्रेन हम तब करा, जैसे कुछ ना स्पेशल सिचुएशंस होती हैं, सपोज कोई फीमेल है कि 50 साल की उम्र के बाद बता रही है कि हेडेक मेरे
0: अच्छा
1: को अभी शुरू हुआ है
0: हाँ
1: रिसेंट, तो वो अलार्मिंग चीज़ है कि
0: अच्छा
1: भाई पहले कभी हुआ नहीं तो अब हेडेक हुआ है तो कुछ ब्रेन में ना हो, उस
0: हाँ
1: सिचुएशन में हम MRI कराएंगे। बच्चे का हेडेक हो जो ठीक ही ना हो रहा हो, हमने बताया था ना शुरू में कि बच्चे का
0: बच्चा हो
1: फ्रंटल
0: सकता
1: हेडेक
0: है,
1: होता है,
0: हाँ
1: लेकिन अगर बच्चे का हेडेक ठीक ही ना हो रहा हो भाई 5-6 दिन से भी ज़्यादा चल गया तो करवाएंगे, देन ओल्ड एज, ये सारी जो इंडिकेशन होती है MRI की।
0: जी।
1: जी
0: अब कई बार एक भ्रांति आती है लोगों में कि हमें जब माइग्रेन होता है बहुत तेज दर्द होता है और उससे हमारे सर की नसें कमजोर हो जाती
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: सब लोग ऐसा बोलते हैं, ये भ्रांति है
1: ये
0: सच है?
1: बिल्कुल भ्रांति है, ये
0: जी
1: बिल्कुल भ्रांति है। नसें माइग्रेन का जो कारण होता है ना, वो ये मान लीजिए कि ब्रेन में जो हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो गए,
0: जी
1: ठीक है, तो वो एक्टिवेट हो गए तो उसकी वजह से कुछ केमिकल निकल रहा है, वो केमिकल जाके ब्रेन के दूसरे पार्ट को एक्टिवेट कर रहा है, तो वो तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि कुछ कमज़ोर हो रहा है, कुछ
0: जी
1: भी नसें कमज़ोर नहीं हो रही हैं, केमिकल निकल रहा है ख़त्म हो रहा है, निकल रहा है ख़त्म हो रहा है।
0: अच्छा
1: जी
0: जी, हमने कारण जाने, लक्षण जाने, अब ट्रीटमेंट की बताइए,
1: जी
0: क्या ट्रीटमेंट होता है? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट होता है,
1: जी सबसे
0: बताइए।
1: पहले तो देखिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट तो यही होता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हम कह रहे थे ना कि
0: बिल्कुल
1: खाली पेट नहीं रहना, पानी ज़्यादा पीना है, नींद नींद ठीक से लेनी है, ये तो हो गया कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन,
0: जी
1: जैसे रीएश्योरेंस, जैसे मान
0: हाँ
1: लो कोई बच्चा है,
0: हाँ
1: बच्चे में हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर सकते,
0: जी
1: उनको रीएश्योरेंस पहले तो पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा, फिर बच्चे को भी थोड़ा ये है कि कोई और भी कोर्स देखना पड़ेगा,
0: हाँ
1: बट सपोज नहीं ठीक हो रहा किसी को, तो उस केस में हम फिर बहुत सारी मेडिकेशंस अवेलेबल हैं आजकल तो ना,
0: जी
1: तो वो जैसे अलग अलग होता है कि एक तो होता है कि एक्यूट माइग्रेन
0: जी
1: कि जिसमें कि अटैक्स जो हैं वो 1 महीने में, कोई ये कहे कि मुझे तो 15 अटैक आ जाते हैं, 14-15 अटैक आ जाते हैं।

0: करते हैं वो है एक्यूट माइग्रेन
1: जी।
0: तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। अगर कोई ये कहे कि भाई हाँ मुझे तो महीने में 15-20 दिन से भी ज्यादा हेडेक रहता है तो वो है क्रोनिक माइग्रेन। तो दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है।
1: अच्छा,
0: एक्यूट का डिफरेंट है, क्रोनिक का डिफरेंट है। क्रोनिक है मतलब हमें उसको लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट पे डालना पड़ेगा।
1: अच्छा बिल्कुल, तो लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट पे डालना होगा, दवाइयाँ चलेंगी उसके बाद उसका कुछ ना कुछ ठीक हो सकता
0: मतलब
1: है।
0: ये है कि सपोज हमने 3 मंथ्स के लिए डाल दिया फिर पेशेंट ठीक हो गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि फीमेल्स में तो टिल मीनोपोज रहता ही है क्योंकि
1: हाँ,
0: हार्मोनल शिफ्ट होते हैं
1: 45 से 50।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसमें ये हम ये कहते हैं कि भाई हाँ जब हो तब अपना ले लो, 2-3 महीने के लिए कंप्लीट कर लो और उसके बाद में जब भी होगा तब दोबारा से देख लेंगे।
1: दो तीन बातें और बताइए,
0: जी
1: क्या लाइफ स्टाइल चेंजेज के साथ साथ खाने पीने में कुछ ऐसी रेमेडीज है? क्योंकि एक साथ बोला जाता है कि अखरोट खा लीजिए, जिससे क्या है कि सर दर्द ठीक होगा और दिमाग की नसें मजबूत होंगी, या फिर बादाम खाइए। इस प्रकार खाने पीने से क्या माइग्रेन को प्रिवेंट किया जा सकता है?
0: नहीं ऐसा कुछ नहीं है। माइग्रेन का तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना,
1: हाँ
0: कुछ भी खा लो, अखरोट बादाम कोई वो नहीं होता इसमें। मतलब खाने का होता है कि भाई खाली पेट नहीं रहना।
1: बी
0: हाँ टाइम टू टाइम खाना जरूर है, कोई ये ना हो ना जैसे फीमेल्स हैं देखो घर के काम में लगी रहती हैं दोपहर तक खाना नहीं खा रही हैं
1: हाँ
0: तो उनको तो हेडेक होगा ही होगा।
1: बिल्कुल
0: तो खाना इज मोर इम्पोर्टेंट।
1: जी।
0: हाँ जी
1: और साथ के साथ में मेडिटेशन की बात है, कई बार ये बोलते हैं कि भाई मेडिटेशन से दिमाग शांत होता है,
0: हाँ जी
1: कामनेस आती है और
0: जी
1: सरदर्द गायब हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मेडिटेशन की प्रैक्टिस अगर कहीं पे कोई रिसर्च हुआ है, कोई बात आई हो, तो ये माइग्रेन के लिए कितना हेल्पफुल है?
0: माइग्रेन का ये नहीं कह सकते कि मेडिटेशन हेल्प करेगा। इन ईच एंड एवरी हेडेक मेडिटेशन हेल्प करता है।
1: जी
0: स्पेशली जो जैसे टेंशन हेडेक होता है ना, टेंशन टाइप हेडेक हम उसको TTH बोलते हैं,
1: अच्छा
0: उसमें डेफिनेटली हेल्प करता है क्योंकि माइंड काम रखना ज़्यादा ज़रूरी है।
1: जी
0: माइग्रेन के लिए तो ये है ना कि भाई अगर सपोज जिसको कोई जेनेटिकली वो है ससेप्टेबल है अगर कोई माइग्रेन के लिए तो वो तो होगा,
1: जी,
0: मतलब वो तो टाइम टू टाइम होता ही रहेगा।
1: जेनेटिकल का मतलब ये हो गया कि भाई उसके घर में पूरी एक हिस्ट्री है इसकी।
0: हिस्ट्री है पूरी। बिल्कुल
1: हाँ
0: बिल्कुल। हाँ
1: जी
0: तो ये भी एक टाइप ऑफ माइग्रेन ही होता है कि जिसमें जेनेटिक मतलब कुछ हिस्ट्री मिलती है हमें कि घर में सबको ही होता है इस तरह से हेडेक।
1: जी
0: कई लोग तो होते हैं कि उनको हेडेक के साथ में लकवा भी हो जाता है जो कि रिकवर भी हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: हाँ तो ये भी एक टाइप ऑफ माइग्रेन है।
1: हमने मेडिटेशन की बात की है
0: जी।
1: लेकिन मेडिटेशन के साथ में बात करते करते जैसे आजकल की भागदौड़ की जिंदगी है, सब बिजी रहते हैं,
0: जी
1: तो इस लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बहुत है।
0: बिल्कुल।
1: स्ट्रेस जो है वो कैसे प्रभाव डालता है माइग्रेन पे?
0: माइग्रेन के जैसे आपने थोड़ी देर पहले पूछा था ना कि ट्रिगर्स क्या हैं,
1: हाँ
0: तो स्ट्रेस इज वन ऑफ द ट्रिगर।
1: अच्छा
0: जितना ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि देखो ऐसा है ये हेडेक जो है वो स्ट्रेस से तो बढ़ेगा, चाहे वो माइग्रेन हो चाहे टेंशन हेडेक हो चाहे कोई भी हेडेक हो, वो तो स्ट्रेस से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो स्ट्रेस कम रखना ही एक इसकी ये भी एक रेमेडी है, ये भी एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है।
1: जी एक आखिरी सवाल आपसे चलते चलते
0: जी,
1: पूछेंगे,
0: जी
1: डिप्रेशन और माइग्रेन।
0: जी
1: कई बार ऐसा होता है कि हम डिप्रेशन में चले गए हैं और डिप्रेशन में जब हैं उस दौरान हमें माइग्रेन हो गया है, क्या डिप्रेशन की वजह से माइग्रेन हो सकता है या फिर माइग्रेन की वजह से हम कई बार डिप्रेशन में जा सकते हैं?
0: देखो माइग्रेन तो टोटली डिफरेंट चीज़ है ना। जो डिप्रेशन की वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाँ हेडेक हो गया, उसको माइग्रेन लेबल करना थोड़ा मुश्किल है
1: जी,
0: है ना। उस इसीलिए हम लोग ना डिटेल हिस्ट्री
1: कन्वर्ट
0: नहीं हो सकता
1: जी।
0: उसको फिर हम टेंशन हेडेक बोल सकते हैं कि भी टेंशन टाइप हेडेक हो गया है। अगर डिप्रेशन और माइग्रेन दोनों इकट्ठे हैं सपोज किसी में, तो वो ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाता है।
1: अच्छा
0: उसमें जो दवाइयाँ जो हमें जो मेडिसिन सेलेक्ट करनी होती है ना, वो उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी होती है।
1: जी
0: हाँ जी। और जैसे दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि ऐसे रैंडम ट्रीटमेंट कभी नहीं करना होता माइग्रेन का, सिचुएशन देखनी होती है।
1: अच्छा।
0: कोई यंग बच्चा है तो अलग ट्रीटमेंट होगा, यंग लड़की है तो अलग ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि माइग्रेन की जो मेडिसिन है ना मोस्टली एक आध को छोड़ दिया जाए तो सबसे वेट गेन होता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि कोई यंग फीमेल है तो भी उसमें वेट गेन ना हो जाए, है ना। और वैसे भी फीमेल्स में वेट गेन के साथ में और भी बहुत ज्यादा परेशानियां हो जाती हैं, तो हमें मेडिसिन सेलेक्ट करते टाइम बहुत सारी सिचुएशंस का ध्यान रखना होता है।
1: बिल्कुल। और कुछ कहना चाहें आप इन सब के अलावा?
0: बस वही मैं आपको बता रही हूँ कि हेडेक माइग्रेन या कोई भी टाइप का हेडेक हो,
1: हाँ,
0: जो मेन जो बात है उसमें वो ये है कि हमें हमेशा ना ट्रिगर्स को अवॉइड करना है।
1: जी
0: जो बताया था ना कि स्लीप है, फास्टिंग नहीं रहना चाहिए,
1: और तब जाके तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो
0: मतलब
1: तभी
0: जैसे नॉर्मल जो माइग्रेन होता है,
1: हाँ,
0: कि भाई हम ये कह रहे हैं कि एक साइड होगा जिसमें उल्टी

0: भी आ सकती हैं, जिसमें लाइट से सेंसिटिविटी, आवाज़ों से सेंसिटिविटी। अगर कई बार ये होता है कि अगर इससे कुछ भी चेंज हो रहा है ना, हेडेक में
1: हाँ
0: पैटर्न चेंज अगर हो गया,
1: हाँ
0: सिवियरिटी चेंज हो गई कि अब पहले कम था अब तो बहुत ज़्यादा होता है, तो जैसे ही चेंज हो ना तो लक्षण पहचान के हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन फिर अलग से करने होते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो आपने इतनी सारी जानकारी दी और माइग्रेन के विषय में आपने बहुत कुछ हमको बताया। उम्मीद है जितने भी हमारे श्रोता हैं वो इस वार्ता से लाभान्वित होंगे। तो डॉक्टर सुरेखा डावला जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने विस्तार से इस विषय को हमें समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर। ओके,
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेहत। इसके अंतर्गत आज आपने डॉक्टर सुरेखा डाबला से भेंट वार्ता सुनी। विषय था सिरदर्द व माइग्रेन, कारण, उपचार व बचाव। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: श्रोताओं, कूटनीति में महिलाओं के अभूतपूर्व योगदान को सम्मानित करने और निर्णय लेने के हर स्तर पर उनकी समान भागीदारी की वकालत करने के लिए हर वर्ष 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प के माध्यम से 20 जून 2022 को इस विशेष दिवस को मनाने की आधिकारिक घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, शांति निर्माण और वैश्विक कूटनीति में महिलाओं की ऐतिहासिक और वर्तमान भूमिका को स्वीकार करना और इस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली ढांचागत चुनौतियों व लैंगिक असमानता को उजागर करना है। यह दिवस याद दिलाता है कि शांति, लोकतंत्र और सतत विकास के लिए राजनयिक मिशनों और अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में महिलाओं की समान भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। कूटनीति के क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कई अग्रणी महिला राजनयिकों ने विश्व मंच पर देश का मान बढ़ाया है, जो लैंगिक समानता और सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देता है।

श्रोताओ, अपने स्वास्थ्य के प्रति कभी भी लापरवाही न बरतें और हमेशा जागरूक रहें। छोटा सा बचाव और सही जीवन शैली आपको बड़ी बीमारियों से दूर रख सकती है। खराब स्वास्थ्य संबंधी आदतें तनाव बढ़ा सकती है। खराब स्वास्थ्य तनाव से निपटने की अपनी क्षमता को प्रभावित करता है और खराब स्वास्थ्य से उत्पन्न तनाव काफ़ी गंभीर हो सकता है। दैनिक जीवन को भी प्रभावित करता है। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर असर डालती है। यह दैनिक कार्यों को कठिन बना सकती है, आर्थिक तनाव पैदा कर सकती है और यहां तक कि आपकी कार्य करने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है। इसके लिए पोषण, व्यायाम, स्वच्छता की मूल बातें जानने से अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में काफ़ी मदद मिलती है। लोगों को अस्वास्थ्यकर जीवन शैली विकल्पों से जुड़े जोखिमों और उन्हें कम करने के तरीकों के बारे में जागरूक होना चाहिए। रोकथाम ही स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए आप संतुलित आहार लें। अपने भोजन में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज शामिल करें और जितना हो सके तरल पदार्थ जैसे कि जूस, लस्सी, इस तरह के पेय पदार्थों का सेवन करें। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम जरूर करें, या आप रोज भी थोड़ा थोड़ा समय व्यायाम या योगा जरूर करना चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है और आपको पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। हर रात 7 से 9 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। किसी भी असामान्य लक्षण को नज़रअंदाज न करें और समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाते रहें। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही अपने स्वास्थ्य को लेकर करते हैं तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो इससे बेहतर है एक अच्छी जीवन शैली अपनाएं, स्वस्थ रहें।

श्रोताओ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। अगर ज़रूरी ना हो तो घर पर ही रहे, अगर बाहर जाना है तो छाते का प्रयोग करें या कोई कप

सर पर ढक कर जाएं, पानी समय समय पर पीते रहें, पेय पदार्थों से हमेशा अपनी दोस्ती रखें, कुछ भी तरल पदार्थ या कोई भी जूस से भरा हुआ फल आप जरूर सेवन करते रहें, खुद भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। इन्हीं बातों के साथ सुबह सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार और उसके बाद 8:15 पर अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
2: वी नीड टू बी कॉग्निजेंट

0: स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थाम की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
1: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल,

0: वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं, और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच

0: शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा, पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। ब्रिक्स नेशंस कॉल फॉर स्ट्रॉन्गर कोऑपरेशन टू एड्रेस वाइडनिंग रेंज ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस इंक्लूडिंग टेररिज्म एंड साइबर थ्रेट्स। Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0. Match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA, Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Delegates exchanged views on issues ranging from energy and food security to climate-related instability and the misuse of emerging technologies by terrorist organizations. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address the emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world.
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative, disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber threats in a world which is getting increasingly digitized, they all constitute an important threats for us.
2: Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from the Emir of Qatar, Sheikh Tamam bin Hamad Al Thani. He expressed condolences over the loss of lives of 12 Indian nationals in the accident at Ras Laffan Industrial City in Qatar on Sunday and conveyed his wishes for the speedy recovery of those injured. Mr. Modi thanked the Qatari leader for his words of sympathy for the affected families and appreciated the prompt medical assistance extended to the injured. The two leaders also reaffirmed their commitment to ensuring the well-being and safety of their citizens and reiterated their solidarity and support for each other. During discussions on the situation in West Asia, Prime Minister Modi appreciated Qatar's constructive role in the ongoing peace efforts. India has strongly criticized Pakistani Defence Minister

सेठानी ठीक कया तन सेठानी गुड़ कृष्ण के रागू मारे जिस पाले पे खड़ा करया सू उस तेना भागूंगा देखे शर्म भरी मेरी आख्या में कितनो कर लागूंगा रे इसी नौकरी करण ते अच्छा घर प्राण।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: श्रोतो, आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। आज हमारे कलाकार हैं बिजेंद्र सिंह नरवाल और साथी।

ne kare he ulke bede paar ge neem dharam pun daan tajye te डूब अदम मजे धार गए देखे गज और गर लड़े जलमा ये गज हरी

ਇਕਲੋਤਾ ਗੇੜਾ ਭਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਜਗਰ ਥੜਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲ ਪੜਿਆ ਲੜਕੇ ਨਾ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। कलाकार थे बिजेंद्र सिंह नरवाल और साथी। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस गीत के साथ, जिसे लिया है फिल्म तुम हंसी मैं जवां से। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की, गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: मोहम्मद रफी की आवाज में आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है दर्पण। आनंद बख्शी ने बोल लिखे हैं, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गीत। आवाज़ें हैं आशा भोसले मन्ना डे की, माफ़ कीजिएगा आशा भोसले और मिंडो की। गीतकार हैं SH बिहारी, संगीतकार हैं OP नैयर और फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म ये दिल आशिकाना से। आवाजें हैं कुमार सानू और अनुराधा पोडवाल की, समीर ने बोल लिखे हैं और इस गीत के लिए संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, के

0: अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: किशोर कुमार की आवाज में आइए सुनते हैं फिल्म डॉन से ये गीत। गीतकार हैं अनजान, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।
4: रंग का रंग जमा हो चकाचक, हिरला पान चबाए।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अब आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने और धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस।

लता मंगेशकर और इला अरुण के स्वर में आइए सुनते हैं लम्हे फिल्म से ये गीत। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है शिव हरी।

लता मंगेशकर के स्वर में अब आपको सुनवा रही हैं फिल्म खिलौना से ये गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं गीत। फिल्म का नाम है गुलामी। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, सबीर कुमार की। गुलजार ने बोल लिखे हैं, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति और इस गीत को लिया है फिल्म आया सावन झुमके से। आवाज मोहम्मद रफी की है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत के लिए संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इसी गीत के साथ मन भावन कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 10:05 पर अंग्रेजी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उसके परिणाम की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट भी बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिनिवेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। तमिलनाडु सरकार ने वेत्री तमिलगम दस्तावेज को मंजूरी दे दी है। इसमें मामा की ओर से सोने की अंगूठी देने की बात कही गई है। योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में बच्चे का जन्म होने पर राज्य के स्थायी निवासियों के नवजात शिशुओं को 1 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रानी

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10:10 और 15 सेकंड हुए हैं। अब हमारा आज की पहली सभा के प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। अगली सभा में दिन में 12:30 पर फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। हालांकि FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे कार्यक्रम जारी हैं।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:30 और 12 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा आरंभ होती है। आइए सुने NCERT द्वारा प्रस्तुत ये प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओ आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब

शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ, जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी, तो श्रोताओं, कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं, जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी, चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टाने चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया। अद्भुत है ना? जी, किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं, कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुम्बसर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के

0: अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुम्बसर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द लीव्स ग्रोइंग इन द ट्री? द न्यू टेंडर लीव्स स्पर्टिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस लाइक द फ्लावर्स ब्लॉसमिंग? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
1: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
2: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
1: Very nice. The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
1: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
2: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
1: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
2: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
1: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
2: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
1: Yes, and now the leaves on the trees have fallen down, fallen down, fallen down.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की

0: बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
1: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
0: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा मुझे ये देखकर आश्चर्य बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधि भी सीखी।
1: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
0: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
0: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सब प्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
0: जी अवश्य।
1: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
0: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
4: जी
1: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर

0: माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
1: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
0: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
2: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
3: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि रामकथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
2: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
3: जी जी,
2: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
3: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
2: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
3: जी,
2: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
3: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
2: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
3: जी,
0: तो फिर क्या था? विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
1: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
2: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
0: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
1: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कंबन द्वारा तमिल में रचित कंब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
0: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
2: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
0: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
1: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।

0: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्की बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
1: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
0: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
1: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रस्तुत ये प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1100।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सदस्य के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सदस्य के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है।

0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन्स है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
1: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25 से 50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं, और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई विभागीय उच्च अधिकार प्राप्त खरीद समिति की बैठक में प्रदेश में आगामी मॉनसून को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण के लिए

प्रदेश सरकार द्वारा 30 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जाएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम से प्रदेश के संवेदनशील और निचले इलाकों में जल निकासी व्यवस्था को भारी मजबूती मिलेगी। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ नियंत्रण से जुड़ी सभी सामग्रियों की आपूर्ति समय

0: पुल होते ही सड़क निर्माण एवं सुधार कार्यों को तेजी से शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए। श्री रणबीर गंगवा लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप राज्य के सभी 22 जिलों में विकसित की जाने वाली आदर्श सड़क परियोजनाओं के साथ साथ अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। श्री रणबीर गंगवा को अधिकारियों ने बताया कि इन दो सड़कों की कुल लंबाई लगभग 115 किलोमीटर होगी। इन सड़कों को सौंदर्यकरण, आधुनिक सुविधाओं और सड़क सुरक्षा के लिहाज से प्रदेश की आदर्श सड़कें बनाया जाएगा। अधिकारियों ने जानकारी दी कि चयनित 8 सड़कों का विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सर्वेक्षण जुलाई माह में पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही जुलाई तक आदर्श रोड परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी भी मिलने की संभावना है, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। अधिकारियों ने वर्ष 2026-27 के कार्य की प्रगति को लेकर बताया कि प्रस्तावित 1633 सड़कों में से 1042 सड़कों के अनुमान तैयार कर भेजे जा चुके हैं, जबकि शेष सड़कों की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी की जा रही है। अंबाला जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा कल अंबाला शहर के पंचायत भवन में सुबह 9 बजे से दिव्यांगजनों के लिए विशेष मापन एवं उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। रेडक्रॉस सोसाइटी से कार्यक्रम के जिला संयोजक सुनील कुमार ने बताया कि शिविर में अंबाला जिले के अंबाला, नारायणगढ़, बराड़ा, मुलाना सहित सभी 6 खंडों के पात्र दिव्यांगजनों को आवश्यकता के अनुसार ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, बैसाखियां तथा अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इस बार विशेष प्रयास किया जा रहा है कि मापन के बाद लाभार्थियों को उपकरण उसी दिन अथवा अगले दिन उपलब्ध करा दिए जाएं, लोगों को कई महीनों तक इंतजार न करना पड़े। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत MY यानी माय भारत चंडीगढ़ ने युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने तथा संगठित युवा समूहों के माध्यम से सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरे चंडीगढ़ में यूथ क्लब विकास अभियान की शुरुआत की है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का आपके खतों पर आधारित कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को उषा मलिक का नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आपके अनुरोध पर में।

सूरज और चंदा, आपने सुना इस फिल्म का गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी और पसंद हमारे इन सभी सुनने वालों की। अली का तहसील डबवाली से रूप सिंह लखोत्रा, कर्मजीत लखोत्रा, सर्वजीत, रानू, सोनू व रजनी। लुधियाना से आप हैं रमन अग्रवाल। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, बेबी गव्या। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज रिफाकत। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार। संभाजीनगर औरंगाबाद से सुषमा बोरगांवकर, प्रकाश बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम सदानंद, विराज अंशुमन। खंडवा से आप हैं दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता व गौरव सैनी। मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार, शेख, शागिर, वजीर, सोहेल, सैयद, तहमूर, सैयद अजलान। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं जब जब फूल खिले फिल्म का गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी संग सुमन कल्याणपुर की, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत कल्याण जयानंद जी का और पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की। कोपरगांव एमपी से सुदेश मालोदे व वर्षा। स्कारब्रो कनाडा से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आकले दीवान एमपी से रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा मुकेश व सरिता शर्मा। गांव भाणा ब्राह्मणा नरवाना से मेघराज शर्मा, गौरव सौरभ, विजय, अजय, जोगेंद्र, जितेंद्र शर्मा। गांव चौधरीवास से मांगेराम।

शुभम यश विनोद चौखुटी बुलंदशहर से सईदा टप्रियाल निखत मदनवाज राजकोट से नूर मोहम्मद लखानी जुबैदा और जियान लखानी आनंद गुजरात से आशाबेन पटेल विशाखा व पामिला पटेल भीलड़वापी गुजरात से कल्पना मदान झा मानव और मयंक आइए सुने आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: बार सरकार हजारों बार तुम्हीं से कर बैठे
1: ना करके प्यार तुम्हीं से कर बैठे।
2: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल हर घर और हर जन हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत जिसे पसंद किया है आप सभी ने। पेंटर तुलसीराम डेरे, माया डेरे, संदेश पेंटर, अमोल, गुलशन, आदेश, किरण, प्रज्वल डेरे, दादुल्या डेरे, आप सभी लिखते हैं धामणी मानोरा से। सोमठाणा जिला वासिम से आप हैं डॉक्टर विशाल, तुलसीराम, ललिता, पायल और आरुष। और आप हैं कुदोपाली उड़ीसा से गिरधारी लाल, विश्वकर्मा, सरस्वती देवी और विहंगम विश्वकर्मा। कीर्तिनगर नई दिल्ली से सुशांत प्रिय झा, निवेश वैनियति। भीलवाड़ा राजस्थान से गजेंद्र सिंह तोमर, राजेंद्र वीरेंद्र। मधुबनी बिहार से AK झा, दुर्गा प्रसाद सैनी, RL चंद्रवंशी, अमोल मानकर और राजेश। मधुबनी से ही आप हैं अरविंद गुड़िया भव्या। बाड़ी खामगांव

से अनंता रामेश्वर, शुभम साक्षी में खुशी, सूरतगढ़ से आप हैं शोभा, अनिल, आशुतोष और पारितोष। आप सभी की पसंद पर आइए सुने जंगली फिल्म का गीत लता मंगेशकर का गाया हुआ।

दिल तेरा दीवाना। अब आपको सुनाने जा रहे हैं इस फिल्म का गीत, युगल स्वर मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के हैं, गीत श्यामराज का, संगीत शंकर जयकिशन का और पसंद आप सभी की। बेरड़ी से आप हैं हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक, प्राची करमरकर, तनु करमरकर, मोरी गेट दिल्ली से कन्हैयालाल, रीता, शिल्पा, आकाश, महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, प्रिंस, इशरत, वसीम, रुबीना, आरिज, साजिया, शाहीन, नाजिया, नूरी नाज, ममता शर्मा व पूनम शर्मा, जलगांव जालना एमपी से डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अभिषेक भूतेकर, गणेश कार्तिक और अश्विनी भूतेकर, औरंगाबाद से आप हैं वैष्णवी जगदाले और हर्षुल सावंगी, भाव सिंहपुरा से वैभव गौरव लोखंडे, वाकुलनी बदनापुर से मेघराज युवराज कोलते, रिधोरा देवी व रुद्र कोलकर, गांव कबूलपुर रोहतक से रण सिंह ढिल्लो, सतपाल, मंजू, रोशनी दुग्गल, पूजा, ओम मोर, अंकित व नोरंगी अटकान। आप सभी की पसंद, आपकी नज़र।

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। अगला गीत हमने चुना है आप सभी के अनुरोध पर। आप हैं सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश चौहान, शिव प्रकाश व वेद प्रकाश चौहान, डबवाले से जेके बोकोलिया, सुनीता, संजय, अनिल व मीनू बोकोलिया, बीसलपुर से विमल वर्मा, नीतू वर्मा, प्राची वर्मा, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा असलम अकरम व अल्ताफ अंसारी, चोहल्दा से संजय ढिंगिया, नमन मुस्कान कुणाल, गांव फ्रांसी से राजकुमार डुडी, सरजीत सिंह डुडी व प्रमोद, दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश।

राजपाल पंकज, काजल सीमा मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी मोहिनी, ऋतिक व बलबीर सिंह। आप हैं खजूरी खास दिल्ली से पृथ्वी सिंह नेगी, सौरभ गौरव नेगी मीठी और कुहू, डुमराव से डब्लू अंसारी सोनम अदीबा दानिश, सारिमपुर बक्सर से आसमा खातून एस डी अंसारी मेहताब आफताब मिराज अंसारी, और शीतलानगर दुर्ग से आप हैं शिव चंद्राकर और भगवान चंद्राकर। आप सभी की पसंद पर आइए सुने राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है मन मंदिर।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों को आइए अब सुने लाट साहब फिल्म के लिए। शब्द रचना शैलेंद्र की, संगीत शंकर जयकिशन का और पसंद आप सभी सुनने वालों की। लोको कॉलोनी लोहारू से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, बरखा कुमारी, योगेंद्र कुमार और नरेंद्र कुमार चिंडालिया। जलालाबाद वेस्ट से आप हैं सुरेश गगनेजा, पूनम रुचि, विनीत आहूजा, निमित और विशाल गगनेजा। बरेली कैंट चनहेटी से विनेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान। लाल मस्जिद भिवानी से शीला देवी, प्रवीण पोपली, अमित प्रिंस, दृश्य ज्योति, तुलसी देवी, गीता, दीक्षा व निश्चित रहेजा। गांव जाखोद से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार व दीपक खटक। गांव मोहला जिला हांसी से आप हैं राजकुमार, गीता, अमन और सानिया।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं लोफर फिल्म का गीत। आवाज आशा भोसले की है, गीत के बोल अनंत बख्शी ने लिखे और धुन तैयार की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहा आप सभी श्रोताओं ने। बाजवा कॉलोनी पटियाला से कृष्ण कुमार, बीना रानी, रवि कुमार, पारस, साहिल, आशीष, पूनम व रोहन। मंडी हरजीराम मलोट पंजाब से महेश गर्ग, सुषमा गर्ग, जश्न व चीनू गर्ग। सहावर टाउन जिला कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका और सुशांत नायक। और आप हैं छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरोल, नारायणी सिंगरोल, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरोल। मुगलपुरा बागपत से लिखते हैं अब्दुल सत्तार अब्बासी, गुलशन जहां। गांव लुडेसर से पप्पूराम गाट, संतोष देवी, लक्ष्मी, प्रियंका, साक्षी और रुचिका देवी। और आप हैं सतीश अनेजा और बिमला अनेजा जो लिखते हैं चंडीगढ़ से।

और अब आप और हम मिलकर सुनेंगे लैला मजनू फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, साहिर के बोल, जयदेव का संगीत और पसंद आप सभी सुनने वालों की। आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन और माहिरा नूर। आप लिखते हैं जसपुर उत्तराखंड से। लोहगढ़ ठाकरावाला पंजाब से स्वर्ण सिंह, दलजीत, राजदीप, गुरलाल, अविराज, गुरनूर और शुभदीप। पतरोड़ा से मंगल जनागल, रोशनी, अंकुर, इंदु और सुनील जनागल। पिपरिया कबीरधाम से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता। अकोला महाराष्ट्र से सुशीला मंदूरकर, सदानंद गौरव, निशा नागरीकर। नांदूरा तिरुपति नगर से संतोष वसाने, उषा, ऋषिकेश, अनिकेत वसाने। लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश, समीर, राजकुमारी पटेल। वाकोड़ी महाराष्ट्र से उत्तम जमधाड़े, स्वराज जमधाड़े, स्वरीत पोपलवाड़, संघर्षा संविधान हिंगड़े। हिंगोली से आप हैं शाहजी वोड़के और नंदा। हदगांव आष्टी एमपी से सुधाकर कामले और संदीप कामले। तालुका पूर्णा देगांव महाराष्ट्र से सदाशिव थोरात। आप सभी की पसंद पर आइए सुने आपके साथ हम भी मिलकर।

अभी आप सुन रहे थे आपके अनुरोध पर कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर।

अपने सुनने वालों को एक बार फिर याद दिला दें, आज रात 10 बजे एक और फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनेंगे, मन चाहे गीत, रात्रि 10 बजे।

रक्तदान जीवनदान है। आपके रक्त की चंद बूंदें किसी बुझती जीवन ज्योति को अमूल्य जीवन दे सकती हैं। रक्तदान कीजिए, एक जीवन बचाने के सुख को महसूस कीजिए। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। अब आप समाचार सुनेंगे, पहले अंग्रेजी में उसके बाद हिंदी में। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए

0: दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
2: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाता

0: नेताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशंस हैं।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थीं। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले 1 से 2 दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मनोज के

0: दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक के उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है खेतीबाड़ी संबंधी हमारा दोपहर कालीन प्रसारण खेत खलिहान।

खेत खलियान कार्यक्रम सुनने वाले सारे बन भाई ने बलजीत भाई की राम राम भाई। दो अपने खेत क्यार के जो काम चल रहे हैं, खास तौर पे धान की रोपाई का जो काम चल रहा है, तो वे किसान भाई अपना खूब खेत में काम लाग रहे हैं करण। साथ साथ में जो अपने बरानी इलाके हैं उनमें भी बाजरे की बिजाई और चारे की फसलों में ज्वार की बिजाई, बहुत सारे काम हैं, सोयाबीन की बिजाई भी कुछ भाई लाग रहे हैं करने। और ये जो काम है अपना फसल चक्कर, जित अपने दौरे पानीपात के साधन कम है, थोड़ा हम थोड़ा मोटा अनाज है जो वो फसल ले लें तो और बढ़िया रहेगा। एक तो फसल चक्कर भी हो जाएगा, पानी की अपनी बचत भी हो जाएगी। तो इन चीज़ों की तरफ हमने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हमारे दौरे पानीपात के भरपूर मात्रा में साधन हैं, या फिर अपना खेत ईसा है कि भाई शेमाड़ा खेत है या चोए ऊपर हैं, तो हमें धान की फसल का लोभ करें ना, तो फिर दूसरी फसल लेवें। और भी बतेरे विकल्प हैं, तो उन फसलों की ओर अग्रसर हुएं ना कि धान की तरफ। धान की तरफ जाना एक थोड़ा ऐसा है कि भाई मजबूरी हो जाए है, क्योंकि सेम वाले खेत से या चोए ऊपर हैं, उड़ा हमें धान की फसल लेनी पड़े है। और यही कारण है कि भाई फिर जो ज़मीन की जो ताशीर है वह उन दो ही फसलों की होकर रह जाए, यानी कि जो दो फसलें जितने भी पोषक तत्व मिलेंगी तो उनकी तरफ हमने चलना पड़ा है, और उससे कि हमारी जो है ज़मीन आदि हो जाए है। कारण ये बना है कि जो दूसरे जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी होती चली जाए, तो यही कारण है कि कहा जाए कि भाई अपने जो ज़मीन है उसका मिट्टी परीक्षण कराऊँ, उसके आधार पर जो है जो फसल लें हमें, उसके आधार पर हमने खाद की जो है वो आपूर्ति करनी पड़े। तो इन चीज़ों की तरफ हमने ध्यान देना पड़ेगा। साथ साथ में कपास की फसल भी खड़ी है भाई, उसमें भी हमने ध्यान रखना है, और जो गन्ने की फसल है उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि आज कार्यक्रम थोड़ा छोटा है, तो इसमें भाई भैया का मनोरंजन भी कराऊंगे और जो है चर्चा का अपना विषय रखेंगे गन्ना फसल की देखभाल। तो भाई गन्ना फसल की के चाहे कोई सी भी फसल हो, इस टाइम पर हमने ध्यान रखना है एक तो सिंचाई का समय समय

0: पे अपने खेत की नमी का हिसाब देखकर हमने सिंचाई कर दे रहना है, खरपतवार उगड़ नहीं देने हैं, यानी कि खरपतवार की जो है रोकथाम हमने करनी है, निराई गुड़ाई करके करें या किसी भी तरीके से करें। निराई गुड़ाई करेंगे अगर गन्ने की फसल में तो बहुत बढ़िया रहेगा, कपास की फसल हुई या गन्ने की फसल हुई, निराई गुड़ाई करेंगे तो खरपतवार भी खत्म होंगे और जो फसल है उसने पोषक तत्व तो भी मिलेंगे, नीचे तक उनकी जड़ों तक तो नाइट्रोजन पहुँचेगी और जो है फसल अपनी ठीक ठाक बनेगी। खासतौर पर गन्ने की फसल में नाइट्रोजन की हमने तीसरी मात्रा देनी हुआ करे है और वह इस महीने में देनी पड़ा करे। कुछ भाई तो दे भी चुके होंगे, यानी कि यूरिया की जो तीसरी अपने दो रखे बज्जा है वह तीसरी हमने इस टाइम पे देनी है, निराई गुड़ाई करके और वह सिंचाई सुई करके अपनी, और उस टाइम पर हमने देनी है। जो भाई रह रहे हैं वह इस महीने के आखिर तक ज़रूर दे दें, और इस महीने का आखिरी जो अपना आय लिया है तो इस महीने के आखिर में अपना जो खाद की बची हुई मात्रा है वह हमने देनी है। और वह पानी लगाने के बाद दें, बत्तर आ जाए उस टाइम पर फिर हमने 45 किलोग्राम यूरिया 1 किले के हिसाब से डालना है और ऊपर तक गोड़ी कर देनी है। फिर यह मात्रा जो है खरपतवार रहित खेत में पानी लगाने से पहले डालें या बाद में अड़का पानी लगा दें, अपने खेत की नमी का हिसाब देख लें। मोड़ी फसल में इसकी 1.5 गुना मात्रा डालनी है, यानी कि उसमें हम 45 किलो डाले हैं तो उसमें 1 कट्टा इसमें डालें तो उसमें 1.5 कट्टा, यानी कि 1.5 गुना जो है मात्रा अपनी जो मोड़ी फसल है उसमें डालना है। तरीका उसमें भी हो रहेगा वे निराई गुड़ाई करके खरपतवार रहित करके और जब अपने खेत में खाद की मात्रा डाल लें। बाकी जिक्र और करेंगे, भाइयों का मनोरंजन करा दें, भाइयों को रागनी सुनवा दें, गायक कलाकार होंगे बाबू रामदैया और उनके साथी।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है हाँ मैडम
2: जी
1: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए
1: पर ये होगा कैसे
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें
1: अच्छा और अगर कोई बदलाव हो
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं
1: बस समझ गया
2: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए
5: तो भाई जो अपना गन्ने की फसल है उसमें मोडी फसल है और उसमें कंसुए का प्रकोप अगर दिखाई दी है तो फिर डायरेक्टर क्लोरपाइरिफास 20% ताकत की प्रति एकड़ जो अपनी फसल है उसमें सिंचाई के साथ दे दें तो कंसुए का प्रकोप जो हो खत्म हो उसके हैं काली कीड़ी पायरीला अग्रिश का आक्रमण हो तो फिर 400 मिलीलीटर क्लोरपाइरिफास 20% ताकत की दवाई 400 लीटर पानी में मिला कर और 1 एकड़ की फसल पर इसका हम छिड़काव भी कर सके हैं बाकी कुछ इलाके में जो है चोटी बेदक जिसने टॉप बॉरर कह दे हैं उसका भी नुकसान काफ़ी

को मिल गया है। तो इसके लिए जो महीना चल रहा है अपना, इस जून का महीना चल रहा है, इसमें 13 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान 3G यानी कि फ्यूराडान जिसने कह दे हैं, यू कीटनाशक डालकर ने और तुरंत सिंचाई कर दें। लेकिन उन खेतों में करना है जिनमें अप्रैल और मई में कुछ हमने लक्षण दिखाई दिए हों या जो इस कीट ने ग्रस्त पौधे दिखाई दिए हों, तो उसमें हमने यू प्रयोग करना है। बाकी तो निराई गुड़ाई रखनी है, खरपतवार इसमें नहीं होने देने हैं यानी कि जमाव नहीं लेने देने चाहिए, और इसमें अपना सिंचाई का हमने ध्यान रखना है क्योंकि गन्ने की फसल भाई लंबी फसल चल रही है और इसमें शुरू से लेकर और आखिर तक ही कोई ना कोई कीड़ा है, कोई बीमारी है, इस तरह का इसमें अंदेशा बन की संभावना बनी रहे है। तो अपनी गन्ने की जो फसल है उसमें खूब अपना डिफर के देख दे रहे हैं। कई बार के हो ऊपर का गोब का जो पत्ता सूखना शुरू हो जाए और उसमें हम खींच के देखेंगे तो नीचे उसमें कंसुआ, तो इसके लिए भी अपना जो दवाई है क्लोरपाइरीफास से उसका हम छिड़काव कर सके हैं। और बाकी चोटी भी दके जो हो जाए तो उसके लिए हम फ्यूराडान ले सकें 13 किलोग्राम और वो अपने खेत में एक एकड़ की फसल में छिड़काव करके और फिर इसमें सिंचाई दे सकते हैं। बाकी तो निराई गुड़ाई का ध्यान रखें, खरपतवार ना पैदा होने दें, साथ साथ में जो ड्योल हैं मेड़ हैं उनकी भी साफ़ सफाई रखें, और साथ में जो अपनी दूसरी फसलें हैं उनका भी हमने ध्यान रखना है, भाई चाहे वो चारे वाली फसलें हैं या अपनी जो अभी चल रही हैं हाल की रोपाई करने लाग रहे हैं वो, या फिर बिजाई जिन चीज़ें की कामना करनी है, जो सी फसल की करनी है उनका भी ध्यान रखना है, और ध्यान भाई समय का भी रखना है। कार्यक्रम का समय समाप्त, चालने सारे बण भाइयों ने राम राम।

आप सुन रहे थे खेती बाड़ी संबंधी हमारा दोपहरकालीन कार्यक्रम खेत खलिहान। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। अब लीजिए सुनिए ये प्रायोजित कार्यक्रम।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1।

प्रिय श्रोताओं, दहेज का अर्थ उस राशि वस्तुओं से लगाया जाता है जिसे कन्या पक्ष की ओर से विवाह के अवसर पर वर पक्ष को दिया जाता है, लेकिन अपनी पुत्री के विवाह अवसर पर अपनी इच्छा से खुशी खुशी दामाद को कोई उपहार देना दहेज नहीं है, लेकिन वर पक्ष के दबाव में या अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा करने के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा वर पक्ष को उपहार देना दहेज है। दहेज एक प्रथा नहीं है, लेकिन भीख लेने का एक सामाजिक तरीका है। फर्क सिर्फ इतना है, देने वाले की गर्दन झुकी होती है और लेने वाले की अकड़ बढ़ जाती है। तो आइए सुनते हैं इस पर आधारित एक नाटक।

0: अरे सुनती हो?
1: हाँ जी, रुको अभी आती हूँ।
0: अरे कल किरण को देखने वाले आएंगे और तुम बाजार से बढ़िया सी साड़ी खरीद लेना। और सुनो, पंकज को पैसे दे देना और वो मिठाई ले आएगा।
1: ठीक है जी।
0: आइए आइए भाई साहब, आपका स्वागत है। भाई साहब, घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना?
2: अरे नहीं नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं हुई। आपका मकान सही जगह पर बना हुआ है।

0: फिर पता पक्का हो तो कौन भटकता है।
1: सही कहा आपने। लीजिए भाई साहब मिठाई खाइए। लो बेटा आप भी ले लो ना।
0: जी भाई साहब। ये है हमारा लाडला बेटा जो कि इंजीनियर है, दिल्ली में नौकरी करता है और 50,000 महीने की तनख्वाह है इसकी।
1: अच्छा बेटा, प्रमोद कौन सी कंपनी में हो?
2: जी मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हूँ।
1: हमारी बिटिया किरण भी बीए कर रही थी लेकिन उस दौरान वायरल बुखार के कारण अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं दे पाई।
3: अरे कोई बात नहीं भाई साहब, परीक्षा ही तो नहीं दे पाई, हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो घर परिवार को संभाल ले और बड़ों की इज्जत करे। पर भाई साहब बिटिया नजर नहीं आ रही।
1: जी अंदर ही है बिटिया, अभी बुलाते हैं।
3: आओ बिटिया यहाँ बैठो। भाई साहब आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। बेटी तुम क्या क्या काम कर लेती हो?
4: जी मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा है।
3: अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने, अब तो खूब निभेगी हमारी, हमें तो भा गई हो आप। क्यों बेटा प्रमोद?
2: माँ आप लोग देख लीजिए, अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है।
0: अरे बेटा शादी तो तुम्हें करनी है, तुम आपस में बात कर लो। शादी से पहले लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को जान ले तो अच्छा रहता है।
5: हाँ क्यों नहीं भाई साहब, अब तो जमाना बदल गया है। किरण जाओ बेटा अंदर और दोनों आपस में बात कर लो।
3: बहन जी अभी कुछ दिनों पहले मेरे चाचा जी ने अपनी बेटी की शादी की थी। उन्होंने अपनी बिटिया को खूब सोने से लाद कर भेजा था और दान दहेज भी खूब सारा दिया था।
0: भाई साहब सुनिए, दहेज तो आशीर्वाद होता है जो बिटिया अपने साथ लाती है, और सभी माँ बाप ये सब तो करते ही हैं।
1: जितना हमसे हो सकेगा उतना तो कर ही देंगे, भला कोई माँ बाप अपनी बेटी के लिए कमी थोड़ी करता है।
3: हम तो साफ कहते हैं कि लेन देन की बात पहले ही हो जानी चाहिए, क्योंकि बाद में जिक जिक सही नहीं लगती।
1: बहन जी हमसे जितना बनेगा हम जरूर करेंगे।
0: भाई साहब वैसे तो हमारे लड़के के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, एक तो 5,00,000 रुपए और साथ में गाड़ी भी दे रहे थे, लेकिन मेरे मित्र लालू ने तुम्हारी बिटिया के बारे में बताया, और लालू हमारे बहुत पुराने मित्र हैं।
1: जी वो मेरे साथ ही काम करते हैं, लेकिन भाई साहब हम इतना तो नहीं कर पाएंगे, पर 3,00,000 तक का इंतजाम तो हो ही जाएगा।
0: अरे भाई साहब लड़की गाड़ी तो लाएगी ना साथ में।
1: भाई साहब अभी हमारा एक बेटा भी है, उसके बारे में भी तो सोचना है ना।
3: अरे भाई साहब आप अपने लड़के की चिंता मत करो, आपके लड़के को भी तो दहेज मिलेगा और अभी तो वो बहुत छोटा है।
1: भाई साहब ऐसा करते हैं, 1,00,000 रुपए नगद और गाड़ी कर देंगे।
0: अरे ऐसी कोई चिंता नहीं है, 2,00,000 रुपए बाद में दे देना, अब तो हम समधी बनने ही वाले हैं।
6: श्रोताओं इन सब बातों के चलते दोनों परिवारों की सहमति हो गई और अंदर से किरण और प्रमोद बाहर आते हैं।
3: लो बच्चे भी आ गए, तो बताओ प्रमोद बेटा लड़की कैसी लगी?
2: माँ मुझे लड़की पसंद है, आप एक बार किरण से भी पूछ लीजिए।
5: अरे बेटा किरण से क्या पूछना, वो हमारी बात कभी नहीं टालती।
3: अरे नहीं फिर भी बिटिया की राय भी जरूरी है, बोलो बेटा।
4: जी जैसा आप लोगों को ठीक लगे।
0: ठीक है भाई साहब अब हम चलते हैं, बिटिया की कुंडली भिजवा देना, हम पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवा देंगे।
6: और फिर किरण की माँ और पिता महेश जी के परिवार को छोड़ने के लिए गेट पर जाते हैं, और उस दिन किरण की माँ बहुत ही खुश थी। किरण की माँ महेंद्र जी किरण के कमरे में जाते हैं और किरण के सर पर हाथ फेरते हुए बोले,
5: बेटा तुम्हें लड़का कैसा लगा?
4: ठीक है माँ, अगर आप लोगों की पसंद है तो मेरी भी पसंद है।
1: मेरी बेटी ने मेरी लाज रख ली, लेकिन एक चिंता मुझे सता रही है, इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा?
5: देखो जी लड़का अच्छा है और कमाता भी है और नशा भी नहीं करता, भला आजकल ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं। और रही दहेज की बात, वो तो बेटी के बाप को देना ही पड़ता है, समाज वालों को भी तो मुंह दिखाना है, गांव की जमीन गिरवी रख देते हैं और बाकी इंतजाम बाद में कर लेंगे।
1: तुम ठीक ही कह रही हो, भला बेटी का बाप होना आसान नहीं है, कुछ तो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। वैसे भी किरण को घर परिवार अच्छा मिल जाए तो जीवन अच्छा बीतेगा।
6: प्रिय श्रोताओं कुछ दिन बाद किरण की शादी बड़े धूमधाम से हुई।

0: और सब काम अच्छे से निपट गए। और किरण के जाने के बाद घर की रौनक चली गई। घर में जो चहल पहल थी उसकी जगह घर अब सूना सूना हो गया। किरण के पिता रोज अपनी बेटी को याद करते थे और कहते थे, जब इस घर में किरण थी तो इस घर में कितनी रौनक थी। और ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू छलक उठे।
1: देखो जी, जब से किरण गई है, जब भी किरण को फोन करो तो उसकी सास फोन उठाती है, और फिर थोड़ी बात होती है तो बात खुलकर नहीं हो पाती है।
2: हेलो हेलो, अरे भाई साहब, मैं महेश बोल रहा हूँ। अरे भाई साहब, आपने तो वो पैसे नहीं दिए अभी तक। क्या इरादा है, अपनी जुबान से फिर गए क्या?
3: अरे नहीं नहीं भाई साहब, जो पैसे आपको देने थे वह छोटे बेटे की बीमारी में लग गए। आप मुझे थोड़ा और समय दीजिए, अभी हमारे घर की हालात ठीक नहीं है।
2: भाई साहब, ये सब नहीं चलेगा, अपनी बेटी को ले जाओ। आपकी बेटी इतनी कमजोर है कि ना तो घर के कोई काम करती है और ना ही टाइम से उठती है, उसके भी रोज के नखरे हैं।
3: अरे भाई साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? शादी की है हमने अपनी बेटी की, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? हमारी मजबूरी समझिए ना।
2: हमें कुछ नहीं सुनना, बहाने नहीं चलेंगे। पहले ही कहा था हमने कि दहेज के बिना शादी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमने शादी कर ली।
3: हेलो हेलो, लगता है बिटिया हमने गलत घर में ब्याह दी है। मुझे लगा था कि वे भले लोग हैं, हमारी मजबूरी समझेंगे, लेकिन वो तो बिटिया को वापस ले जाने की बात कर रहे हैं।
1: अरे ये तो बड़े लालची निकले, हमारे घर की हालात भी नहीं समझते। तुम ऐसा करो, किरण को ले आओ। एक तो किरण से काफी महीनों से बात नहीं हो पाई, पता नहीं हमारे किरण वहाँ खुश है भी या नहीं।
4: बेटा प्रमोद, अब तो हमारे सब्र का बांध भी टूट गया है, तू किरण को कहता क्यों नहीं कि उसके बाप ने जो हमसे वादा किया था, जो उन्होंने हमें दहेज में देने की बोली थी, और अब वो रोज बहाने बना रहे हैं।
5: माँ तू चिंता मत कर, मैं अभी बताता हूँ किरण को। किरण किरण, जल्दी बाहर आ।
6: जी बोलिए।
5: मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि अपने माँ बाप से कह दे वो पैसे भेज दें।
6: सुनो जी, अभी तो हमारी शादी का कर्जा भी नहीं उतरा, और मेरे भाई के इलाज के लिए भी पैसे चाहिए, वो आपको इतने पैसे कहाँ से देंगे?
5: अच्छा, जुबान चलाती है।
6: मुझे मत मारो।
4: प्रमोद एक काम कर, अंदर से तेल लेकर आ और लगा दे आग इसको।
5: ठीक है माँ, रोज रोज का झंझट भी खत्म हो जाएगा।
6: नहीं प्रमोद, मुझे मत जलाओ माँ जी। नहीं प्रमोद, मुझे मत जलाओ माँ जी, बचाओ कोई।
7: अरे ये प्रमोद के घर से कैसी आवाजें आ रही है, चल के देखता हूँ। ओह माय गॉड, ये तो किरण को आग लगा रहे हैं। अभी पुलिस को बुलाता हूँ। हेलो सर, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हमारे पड़ोस में एक बहू को उसकी सास और उसका पति मिलकर आग लगा रहे हैं, आप जल्दी आइए।
8: ठीक है, हम अभी आते हैं। अगर हमें सही समय पर जानकारी ना मिलती तो आज आपने तो इसे मार ही दिया था। इसके लिए तुम्हें आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
3: अरे किरण, ये क्या हो गया बेटा?
6: पापा पापा पापा पापा।
7: अरे भाई साहब, इन्होंने तो किरण को मारने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी।
8: अरे कारण तो बताओ कि क्या हुआ है।
5: सर हमने कुछ नहीं किया, किरण ने खुद आग लगाने की कोशिश की है।
8: क्या किरण, तुमने सच में आग लगाने की कोशिश करी है क्या?
6: सर मेरे पति ने और मेरे सास ने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश करी। वो तो शुक्र है सर इन पड़ोसियों का, जो मेरी आवाज़ सुनकर इन्होंने मुझे बचा लिया। क्योंकि इनको इनके मन मुताबिक दहेज नहीं मिला, मेरे पति को मेरे पापा गाड़ी नहीं दे पाए, और मेरी सास को नगद कैश।
8: हवलदार, इन सबको अरेस्ट कर लो, और अब इनको थोड़ा हवालात की हवा खिलाओ। और माताजी, अगर इस जगह आपकी बेटी के साथ ऐसा करे तब आपको पता चले। हवालदार, डालो हथकड़ी और ले चलो इनको।
0: और इस घटना के बाद किरण के पिता किरण को अपने घर वापस ले जाते हैं, और किरण अपने माता पिता के

दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जो ना जाने कितनी बेटियों को निगल जाती है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आज हमारे देश का कानून व्यवस्था भी इस प्रकार के मामलों में बहुत सख्ताई बरत रहा है। दहेज अधिनियम 1961 सेक्शन 3 और 4 के तहत दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, और इसके साथ साथ जुर्माना भी और कुछ सालों की सजा सुनाई जा सकती है। इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 3:18 हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:30 पर तीसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। शाम के 5:30:10 हुए हैं। हमारी तीसरी सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवाओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

0: कार्यक्रम युवा संसार सुन रहे सभी श्रोताओं को अंजलि का नमस्कार
1: और आप सभी को आपके साथी हर्ष का भी नमस्कार।
0: साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात कर लेते हैं कूटनीति में सक्रिय महिलाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। वैश्विक शांति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देने में महिलाओं की भूमिका ऐतिहासिक है और अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। इस योगदान को सम्मानित करने और भविष्य में कूटनीति में महिलाओं की भागीदारी के लिए हर साल 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शुरू किया गया यह दिवस इस बात का प्रतीक है कि बिना लैंगिक समानता के एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण विश्व की कल्पना करना असंभव है। इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने कूटनीति में हमेशा नेतृत्व किया है, भले ही उन्हें वह पहचान न मिली हो। कई देशों में आज भी सुरक्षा, विदेश नीति और कूटनीति को पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है। कूटनीति जीवन में लगातार होने वाले स्थानांतरण और विदेशी दौरों के कारण महिलाओं को कार्य और जीवन संतुलन बनाने में भारी चुनौती का सामना करना पड़ता है। राजदूत हो या विदेश मंत्री जैसे निर्णय लेने वाले सर्वोच्च पदों पर महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में आज भी काफ़ी सीमित है। कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस केवल एक उत्सव नहीं है बल्कि एक आह्वान है। यह याद दिलाता है कि जब तक कूटनीति चर्चाओं में आधी आबादी की आवाज़ शामिल नहीं होगी तब तक तकनीकी समस्याओं के पूर्ण समाधान नहीं खोजे जा सकते। राष्ट्रों को अपनी विदेश नीति, कूटनीतिक मामलों में महिलाओं को समान अवसर, सुरक्षा और सम्मान देना होगा। कूटनीति के मंच पर महिलाओं की बढ़ती सक्रियता ही एक सुरक्षित और संवेदनाशील और समृद्ध भविष्य की नींव रखती है।
1: बिल्कुल सही कहा अंजलि। और साथियों, आज का यह दिवस उन सभी महिलाओं के योगदान को पहचानने के लिए मनाया जाता है जो दूतावासों, विदेश मंत्रालयों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम करके देश के बीच संबंध को मजबूत बनाती हैं। उनका काम केवल बैठकों में भाग लेना नहीं बल्कि वे व्यापार समझौते तैयार करती हैं, विदेशों में रह रहे हमारे अपने देश के नागरिकों की सहायता भी करती हैं। और आज के समय में महिलाएं कूटनीति के क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी संख्या पुरुषों की तुलना में कम है। जैसे कि मेरे साथी अंजलि ने भी इसके बारे में बात किया, उन्हें कई व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और साथियों, आज का यह दिन अगर समाज में लड़कियों को सही शिक्षा, सुरक्षा और अवसर मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेंगी। और कूटनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से निर्णय अधिक संतुलित और प्रभावी बनता है, जिससे बहुत सी समस्याओं को एक बेहतर दृष्टिकोण से समझा जाता है और उनका जो है एक बेहतर जो है सोल्यूशन निकाला जाता है।
0: जी, इसी के साथ साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह पहला गीत फिल्म यस बॉस से, जिसे गाया है अभिजीत ने। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: साथियों, अभी आपने सुना ये गीत फिल्म यस बॉस से, जिसे गाया था अभिजीत ने, गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीत दिया था जतिन ललित ने। इसी के साथ साथियों, जैसा कि आज आप जानते हैं, आज बुधवार का दिन है और आज के दिन हमारा कार्यक्रम होता है
1: करियर काउंसलिंग। और साथियों, हमारे आज की इस करियर काउंसलिंग के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं विषय AI के क्षेत्र में रोजगार के अवसर। और कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम अपने साथियों से बात करेंगे कि

0: है क्या, इससे हम समझते क्या हैं, और साथ ही साथ इससे संबंधित जो है आप करियर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि आज AI का दौर है और हर क्षेत्र में AI का उपयोग बढ़ रहा है। आज AI केवल एक नई तकनीक नहीं बल्कि रोजगार और करियर का एक बड़ा स्रोत बन चुका है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी तकनीक है जो मशीनों और कंप्यूटरों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। और इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं जैसे वॉइस असिस्टेंट, ऑनलाइन रिकमेंडेशन सिस्टम और ऐसी और बहुत चीज़ें।
1: जी बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में करियर की असीम संभावनाएं हैं। तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों पृष्ठभूमि के लोग इसमें शानदार करियर बना सकते हैं। मशीन लर्निंग, डाटा साइंस और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसी भूमिकाओं की भारी मांग इसमें होती है। हर्ष, इसी के साथ आप बता दीजिए कि अगर हमारा कोई साथी इसमें करियर बनाना चाहता है AI के क्षेत्र में, तो वो अपने करियर की शुरुआत कैसे कर सकता है?
0: बिल्कुल सही, इस करियर में जाने से पहले कुछ चीज़ें हम पहले भी सीख सकते हैं जो हमारी जो है AI के क्षेत्र में बहुत मदद करेंगी आगे के। तो साथ ही आप कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की बेसिक जानकारी ले सकते हैं, साथ ही साथ अंग्रेज़ी और कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान से दे सकते हैं जिससे आप जो एक बेहतर तरीके से आगे चलकर काम कर सके, और लॉजिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता जो है उसे भी विकसित करें क्योंकि आज के समय में वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। बहुत सी समस्याओं को हल करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया, फिर वो चाहे सस्टेनेबिलिटी से संबंधित हो या किसी और चीज़ से, उन सभी में आज AI का ही प्रयोग हो रहा है। साथ ही साथ आप मैथमेटिक्स में विशेष रूप से स्टैटिस्टिक्स और बेसिक अलजेब्रा सीख सकते हैं, और इसके बाद धीरे धीरे आप एक थोड़े से अगले जो है सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं और आप सीख सकते हैं पाइथन की प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो कि AI में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉम्प्ट किस तरह डालना है, क्या प्रॉम्प्ट डालना है ताकि आपको एक सही ढंग का जो है आपको वापस एक प्रॉम्प्ट उसे जो है अब वो आपको दे सके वापस, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो है अंजलि, क्यों ना हमारे साथियों को इसके बारे में भी जानकारी दें कि इस क्षेत्र में प्रमुख जॉब्स क्या रहती हैं और कार्य क्या सब करना पड़ता है।
1: जी बिल्कुल हर्ष, AI के क्षेत्र में अगर प्रमुख जॉब्स की अगर हम बात करें तो उसमें हम सबसे पहले AI मशीन लर्निंग इंजीनियर की बात करते हैं। इसमें काम ये करना पड़ता है, ये ऐसे एल्गोरिदम बनाते हैं जो कंप्यूटर को डेटा से सीखने और निर्णय लेने में मदद करते हैं। अगला है डेटा साइंटिस्ट, जटिल डेटा का विश्लेषण करने और कंपनियों को व्यावसायिक रणनीतियां बनाने में ये मदद करते हैं। अगली है इसमें रोजगार की संभावनाएं, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सकते हैं। ये AI टूल्स से सटीक और बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने के लिए निर्देश तैयार करते हैं। अगला है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विशेषज्ञ, कंप्यूटर और इंसानी भाषाओं के बीच संवाद स्थापित करने वाले सिस्टम ये लोग बनाते हैं, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट। अगला है AI एथिसिस और कंप्लास ऑफिसर, यह सुनिश्चित करते हैं कि AI का उपयोग नैतिक तरीके से हो और डेटा सुरक्षित रहे।
0: बिल्कुल सही कांजली, इसमें बहुत से ऐसे नौकरी के अवसर शामिल हैं जैसे कि आपने बताया AI इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, AI रिसर्चर, साथ में AI प्रोडक्ट मैनेजर, साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस और रोबोटिक्स इंजीनियर। चलिए साथियों, इनके बारे में फिर बात करेंगे, क्यों ना आप सुन लेते हैं एक गीत जो लिया गया है फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से। आवाज़ें हैं अरिजीत सिंह और शशा तिरुपति की, गीतकार हैं मनोज मुंतशिर और संगीतकार हैं मिथुन।

0: साथियों, अभी आपने सुना फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से गीत। आवाज़ें थी अरिजीत सिंह और शशा तिरुपति की, गीतकार थे मनोज मुंतशिर और संगीतकार थे मिथुन।
1: जी हर्ष, अब फिर से विषय पर वापस आते हैं और बात करते हैं AI के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आवश्यक योग्यताएं और कौशल को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जाता है, तकनीकी कौशल और गैर तकनीकी या सॉफ्ट स्किल। इनके बीच का सही तालमेल ही इस क्षेत्र में एक सफल करियर की नींव रखता है। जैसे कि शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले बैचलर डिग्री आती है। कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, गणित या सांख्यिकी में BTech, BCA या BSc। अगला हम बात कर लेते हैं मास्टर डिग्री के बारे में। यह वैकल्पिक होती है। एडवांस रोल के लिए MTech, MCA या डेटा साइंस में MSc काफ़ी मददगार साबित होती है। आवश्यक तकनीकी कौशल की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले प्रोग्रामिंग भाषाएं जैसे कि पाइथन, आर, जावा और C++ आती है। गणित और सांख्यिकी में लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलेशन और प्रायिकता आती है, जिसे प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। डेटा हैंडलिंग में SQL और NoSQL डेटाबेस का ज्ञान, ताकि बड़े डेटा को मैनेज किया जा सके। सॉफ्ट स्किल में जैसे समस्याओं का समाधान, तार्किक सोच और निरंतर सीखने की आदत आती है।
0: बिल्कुल सही कांजलि आपने। साथ ही साथ आपको साथियों बता दें कि यदि आप 12वीं के बाद सोच रही हैं तो आप कुछ इन कोर्सेज में जा सकते हैं, जिसके माध्यम से जो है आपको AI के क्षेत्र में आगे रोज़गार पाने में मदद हो सकती है, जैसे कि BTech या BE, कंप्यूटर साइंस, AI या डाटा साइंस में। BCA आप कर सकते हैं, BSc कंप्यूटर साइंस या BSc डाटा साइंस की तरफ भी आप जा सकते हैं। और यदि आप ग्रेजुएशन के बाद सोच रही हैं क्षेत्र में जाने का, तो आप MTech, MCA, MSc जो कि AI या डाटा साइंस में आप कर सकते हैं। साथ ही साथ AI और मशीन लर्निंग से संबंधित जो है बहुत सारे डिप्लोमा कर सकते हैं, जिससे आपको सर्टिफिकेशन हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप सोच रहे हैं कि आप आर्ट्स या कॉमर्स के छात्र हैं तो भी आप जो है क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज AI केवल कोडिंग तक सीमित नहीं है। आर्ट्स या कॉमर्स के छात्र भी जो है क्षेत्र में जा सकते हैं, जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, AI कंटेंट डेवलपमेंट में, AI कंसल्टिंग में, AI ट्रेनिंग, डाटा एनोटेशन और AI प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसी चीज़ों में भी जो है वो शामिल हो सकते हैं।
1: जी हर्ष, अब हम हमारे साथियों को बता देते हैं कि AI का क्या महत्व है। मशीनी युग से डिजिटल युग की ओर बढ़ते हुए आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र बन चुका है। भविष्य में अपनी जगह सुरक्षित करने और एक बेहतरीन करियर बनाने के लिए AI को चुनना जा सकता है। कई पारंपरिक नौकरियाँ ऑटोमेशन के कारण ख़त्म हो रही हैं, लेकिन AI के आने से और नए और उच्च स्तरीय रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। आने वाले कई दशकों तक AI तकनीकी उद्योग के केंद्र में रहेगी, जिससे इस क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। वर्तमान में बाजार में कुशल AI प्रोफेशनल्स की भारी कमी है, जिसके कारण कि कई कंपनियां इन्हें हायर करने की होड़ में लगी हुई हैं। AI का दायरा केवल IT कंपनियों तक सीमित नहीं है। आप अपनी रुचि के अनुसार किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं, जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, ई कॉमर्स और शिक्षा के क्षेत्र में। यह क्षेत्र आपको हर दिन कुछ नया सीखने, प्रयोग करने और तकनीकी की सीमाओं को आगे बढ़ाने का अवसर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा अंजलि आपने। और साथियों, AI की मांग लगभग हर क्षेत्र में बढ़ रही है, और अगर हम इसके और अधिक अवसर देखें तो स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ केयर में ये रोग पहचान, मेडिकल रिपोर्ट विश्लेषण जैसी चीज़ों में शामिल है। बैंकिंग और वित्त में फ्रॉड डिटेक्शन और रिस्क एनालिसिस में, शिक्षा में स्मार्ट लर्निंग सिस्टम और पर्सनलाइज एजुकेशन के लिए, कृषि में फसल निगरानी और मौसम उत्पादन विश्लेषण, इन सब में जो है AI का प्रयोग रहता है। उद्योग और विनिर्माण में ऑटोमेशन क्वालिटी कंट्रोल में सहायता करती है, और ई कॉमर्स में कस्टमर सपोर्ट और प्रोडक्ट रिकमेंडेशन जैसी चीज़ों में भी आज के समय AI का प्रयोग होता है।

जी, इसी के साथ साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह आखिरी गीत फिल्म लगान से, जिसे गाया है श्रीनिवास और ए आर रहमान ने। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं ए आर रहमान।

0: साथियों, अभी आपने सुना ये गीत फिल्म लगान से, जिसे गाया था श्रीनिवास और एआर रहमान ने। गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीत दिया था एआर रहमान ने।
1: चलिए चलिए साथियों, इसी के साथ अब समय हो गया है जाने का, फिर मिलेंगे किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा संसार, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। लीजिए अब सुनिए आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कार्यक्रम एक फिल्म से का समय रहेगा रात 9:15। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर भेंट वार्ता एक किसान से सुनवाई जाएगी। वार्ताकार होंगी श्रीमती अनीता गौतम। ग्रामीण संसार में कार्यक्रम में शाम 7:00 सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम बालक मंडली। फिल्म संगीत का लुत्फ आप उठा सकेंगे शाम 7:30 पर और रात 10:00 कार्यक्रम मन चाहे गीत के अंतर्गत। अभी आप सुन रहे थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब प्रस्तुत है कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल प्रातः 7:15 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे अंग्रेजी वार्ता। वार्ताकार होंगे श्री सुनीत दास। सुबह सवेरे कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 7:25। लोक संगीत कार्यक्रम प्रसारित होगा सुबह 8:30 पर। गायक होंगे गुलाब सिंह खांडेवाल। दूसरी सभा में दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा संसार शाम 5:30 पर। शाम 6:30 पर एड कार्प्सटन ओल्ड डेफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर स्टेडियम इंग्लैंड में भारत और बांग्लादेश के मध्य खेले जाने वाले ICC महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर डॉक्टर कुलदीप कुमार के साथ बातचीत का विषय रहेगा अगोती फूल गोभी की काश्त। खेत खलियान कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर चारा फसलों की देखभाल विषय पर जानकारी दी जाएगी। फिल्म संगीत का लुत्फ आप उठा सकेंगे सुबह 9:00 कार्यक्रम हेलो रोहतक के अंतर्गत और दोपहर 1:10 पर कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंतर्गत। अभी आप सुन रहे थे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब कुछ स्थानीय सूचनाएं। थाना अर्बन स्ट्रीट जिला रोहतक द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार कुणाल पुत्र नवीन कुमार दिनांक 19/6/2026 से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। रंग सांवला, दुबला पतला शरीर, बाएं हाथ की कलाई पर के गुदा हुआ है। इन्होंने आसमानी रंग की टी शर्ट और पीले रंग का लोअर और पैरों में चप्पल पहनी हुई हैं। इनकी उम्र 25 साल है। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी मिले थाना अर्बन स्टेट रोहतक में संपर्क करें। नंबर रहेगा 01262-274604। एक बार नंबर आपके लिए फिर से दोहरा देंगे 01262-274604। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आधारित आधुनिक डाकघर का उद्घाटन किया गया और अम्बाला दूरसंचार सर्कल के प्रधान महाप्रबंधक कृष्ण बिहारी मीणा ने ग्रामीण युवाओं से भारत नेट उद्यमी योजना से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री से जुड़े कथित वीडियो प्रकरण से संबंधित फर्जी रिपोर्ट मामले में कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने आज पटियाला के रोडेवाल स्थित गुरुद्वारा साहिब में संत बलवंत सिंह जी की बरसी पर आयोजित समागम को संबोधित करते कर रहे थे। गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक होने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया।
1: ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤੇ ਵੱਡੀ ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਚਣੇ ਦੀ ਗੱਲ।
0: उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और पूरे प्रकरण की गहन जांच कराई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में हरियाणा की एक प्रयोगशाला का नाम सामने आया है, जिसके आधार पर कथित रिपोर्ट तैयार होने की बात कही जा रही है।
1: देखिए, मैंने रात जानकारी लिखी है कि किसी ने एप्लीकेशन दिखती थी कि आपके इतने यहाँ पर कोई लेबोरेटरी पे रिपोर्ट आई है और वो गलत है, तो उसकी पूरी जानकारी ली। जानकारी भी जो तथ्य सामने आए से दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार का जेड़ा हुआ है, अपनी कमी न छुपाने है तो दुर्भाग्यपूर्ण।
0: जांच के माध्यम से यह पता लगाया जा रहा है कि इसके पीछे कौन लोग हैं और इसका उद्देश्य क्या था। दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी इतनी निम्न स्तर की राजनीति नहीं करती कि गुरुओं के नाम पर लोगों की आस्था, विश्वास और भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा गुरु परम्परा का सम्मान करने वाली पार्टी है। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित वायरल वीडियो प्रकरण तथा उससे संबंधित सामने आए गंभीर आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग की है। चंडीगढ़ स्थित विधायक दल कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सुश्री रेखा शर्मा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक और पंजाब का युवा चिट्टे और अन्य नशों की भयावह समस्या से जूझ रहा है। वहीं दूसरी ओर राज्य की सर्वोच्च धार्मिक संस्थाओं की गरिमा को लेकर विवाद उत्पन्न किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्टों में सामने आए तथ्यों और शिकायतकर्ता जसप्रीत सिंह द्वारा सार्वजनिक रूप से लगाए गए आरोप अत्यंत गंभीर हैं। गौरतलब है कि गत 16 जून को गुरुग्राम स्थित एक होटल में लुधियाना के पुलिस आयुक्त स्वपन शर्मा तथा पुलिस अधीक्षक जशनदीप गिल कथित रूप से शिकायतकर्ता को मिले थे। सार्वजनिक रूप से सामने आए दावों के अनुसार इस बैठक का उद्देश्य मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े विवादित वीडियो को लेकर एक अनुकूल फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करवाना था। मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि बैठक के सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं तथा कथित व्हाट्सएप चैट्स भी सामने आई हैं, जिनमें रिपोर्ट के विभिन्न हिस्सों में बदलाव, निष्कर्षों को संशोधित करने तथा रिपोर्ट को विशेष दिशा देने संबंधी चर्चाएं दिखाई गई हैं। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा लिपिकीय भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2026 के लागू होने के बाद क्लर्क के पद पर सभी नियमित नियुक्तियां मानव संसाधन विभाग द्वारा की जाएंगी। इनमें सीधी भर्ती के माध्यम की जाने वाली नियुक्तियों के साथ साथ अनुकंपा आधार पर की जाने वाली नियुक्तियां भी शामिल होंगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि अब अनुकंपा आधार पर नियुक्ति से संबंधित सभी मामलों की जांच हरियाणा सिविल सेवा अनुकंपा वित्तीय सहायता अथवा नियुक्ति नियम 2019 के अनुसार की जाएगी। संबंधित विभाग अध्यक्ष की संस्तुति तथा हरियाणा अधीनस्थ लेखा सेवा कैडर के अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत ऐसे मामले आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए मानव संसाधन विभाग को भेजे जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा डाक परिमंडल द्वारा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आज एन जैन थीम पर आधारित

0: नवीनीकृत डाकघर का उद्घाटन किया गया। मुख्य महा डाकपाल सचिन किशोर ने कहा कि यह डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण तथा युवा पीढ़ी को डाक विभाग से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस डाकघर में बच्चों के लिए फ्री वाईफाई की सुविधा है। स्पीड पोस्ट में उन्हें 10% की छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पहल की शुरुआत की थी। आज यह आधुनिकीकृत डाकघर कृषि विश्वविद्यालय में जनरेशन एन को समर्पित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज ने कहा कि समय के साथ आए बदलाव को भारतीय डाक विभाग ने भी अपनाया है। आज डाकघर द्वारा पासपोर्ट सेवा से लेकर ई पुस्तकालय, मुफ्त वाईफाई व कैफे जैसी अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं।
1: माननीय मंत्री जी का जो सपना है अपनी युवा पीढ़ी को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ते हुए यहाँ पे डिजिटलाइजेशन और जितनी भी सेवाएं हैं वो सभी को दे सके, और इसकी शुरुआत जो है वो विश्वविद्यालयों से, स्कूलों से की गई है। भारत सरकार का प्रयास है कि 500 से अधिक इस प्रकार के आधुनिकीकृत और सुधारीकृत डाकघर जो है वो पूरे देश में बनाए जाएंगे।
0: अम्बाला दूरसंचार सर्कल के प्रधान महाप्रबंधक कृष्ण बिहारी मीणा ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं से भारत नेट उद्यमी योजना से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया है। प्रधान महाप्रबंधक ने कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने तथा युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत नेट उद्यमी योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत नेट उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में BSNL सेवाएं उपलब्ध कराने वाले एजेंट के तौर पर काम करते हैं।
2: भारत नेट उद्यमी हमारे बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र में सर्विसेज देने वाले एजेंट होंगे, और ये लोग जब हमसे 4B एग्रीमेंट के साथ जुड़ते हैं तो 50% इनको कमीशन दिया जाएगा। और इस स्कीम से अभी भी हमारे बहुत से उद्यमी 2 से 2.5 लाख का जो है कमीशन उठा रहे हैं। तो मेरा सभी नवयुवकों से अनुरोध रहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा इसके साथ जुड़े और एक आत्मनिर्भर भारत के तहत वो अपना स्वरोजगार स्थापित करके आत्मनिर्भर बने।
0: उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच मौजूद डिजिटल अंतर को कम करना है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने ग्रामीण उपभोक्ताओं को सस्ती एवं बेहतर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नया ब्रॉडबैंड प्लान शुरू किया है। इस योजना के तहत मात्र 259 रुपये प्रति माह में 25 MBPS की हाई स्पीड इंटरनेट सेवा तथा 700 GB डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को एक OTT सेवा भी निःशुल्क प्रदान की जाएगी। यह जानकारी देते हुए अम्बाला दूरसंचार सर्कल के प्रधान महाप्रबंधक कृष्ण बिहारी मीणा ने कहा कि यह प्लान विशेष रूप से ऑनलाइन शिक्षा, वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल भुगतान, वीडियो स्ट्रीमिंग तथा अन्य ऑनलाइन सेवाओं की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार समर्थित इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी और नागरिकों को बेहतर इंटरनेट सेवाएं प्राप्त होंगी। हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा पंजाब के मुख्यमंत्री से जुड़े कथित वायरल वीडियो प्रकरण फर्जी रिपोर्ट मामले में कार्रवाई होगी। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने फर्जी रिपोर्ट से संबंधित पूरे मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग की। हरियाणा सरकार ने कहा क्लर्क के पद पर सभी नियमित नियुक्तियां मानव संसाधन विभाग द्वारा की जाएंगी। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाई ने बलजीत भाई की राम राम भाई। देखो दिन में भी जिक्र चल रहा था कि जो समय है अपना ये काम दाम का समय है और काम दाम का तो तकरीबन सारी आन रहे जा है, लेकिन ये कुछ मौसम जो अपना ऐसे हो जाए हैं कि जिसमें बुआरे का भी ज़्यादा समय हो जाए है भाई, जो अपनी जो फसलें हैं बिजाई के समय नज़दीक आ जाए हैं, कुछ रुपाई के नज़दीक आ जाए हैं, तो ऐसा ही समय है। जो अपनी हाल साल की खेत में फसल खड़ी है उनकी देखभाल का भी समय, कपास की बात करें, गन्ने की फसल की बात करें, और वह बिजाई के समय की बात करें, बरहर की बिजाई का है, जो गर्मियों में चारे की फसल है उनकी बिजाई का समय है, धान की रोपाई का समय चल रहा है, सोयाबीन की बिजाई का है, तो बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनकी हमने बिजाई करनी है, ख़ासतौर पर भाई जो चारे वाली फसलें हैं उनकी, और जो अपनी दूसरी फसलें हैं धान की रोपाई का भी काम बड़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। तो ये भी इनमें थोड़ा ध्यान रखने वाली ये बात है कि भाई एक तो समय का थोड़ा अंदाज़ा लगाएं, खेत की तासीर देखें अपने की, और उस खेत की तासीर ने देख कर जब हम फसलों का चुनाव करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ईसा ना हो कि भाई खेत जो हमारा वही सा है कि उस फसल ने नहीं उठता, हम वह ज़बरदस्ती उसमें फसल लगा लें, फिर आगे चाल कर उसमें खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे और वो जो आमदनी का जो हम अंदाज़ा लगाएं वो पूरा नहीं बन पाओगा। कहने का मतलब यह है कि जित पानीपात के भरपूर मात्रा में साधन है उड़ा पानी वाली फसलें लेवें, जित अपने द्वारा बरानी इलाका है बारिश के ऊपर निर्भर है तो उड़ा उसी फसल लेवें जिनने कम पानी की ज़रूरत हो। तो भाई आज बुधवार भी है और भेंटवार्ता है किसान से भी, भाइयों का मनोरंजन भी, तो भाई सुनाओ भैया ने भेंटवार्ता है किसान से, हालांकि पूर्व प्रसारित है लेकिन समय की है मौके की है, तो सुनिए भेंटवार्ता है किसान से।
1: भेंट वार्ता एक किसान से। भाइयों इस क्रम में आज एक युवा किसान और प्रगतिशील किसान हमारे साथ हैं और इनसे हम इनकी जो अभी तक की यात्रा है उसके बारे में जानेंगे। आप हैं यशपाल खोला जी। यशपाल जी आपका स्वागत है स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार
1: जी। आपका पहले तो थोड़ा परिचय चाहेंगे, गाँव कौन सा है आपका?
2: जी मेरा नाम यशपाल खोड़ा है और जिला रेवाड़ी के ढहिना ब्लॉक के अंदर गांव कमाली होता है वहां का मैं निवासी हूं
1: जी।
2: और हम 2017 से प्राकृतिक खेती की मुहिम में लगे हुए हैं। हमने
1: तो ये प्राकृतिक खेती की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ?
2: प्राकृतिक खेती की तरफ मेरा रुझान होने का कारण था, जो मेरे फादर साहब थे
1: जी,
2: जो एक्स सर्विस मैन थे, उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया था 2016 के अंदर।
1: अच्छा।
2: और उनके ट्रीटमेंट के लिए हम गुरुग्राम के एक प्रतिष्ठित जो हॉस्पिटल है उसके अंदर जाते थे
1: जी।
2: वहाँ से हमें पता चला कि ये जो कैंसर, डायबिटीज़ और बड़ी बड़ी जितने भी बीमारियाँ हैं जिनका मुख्य कारण है हमारा खान पान
1: जी,
2: और खान पान पैदा करने वाले भी हम किसान ही हैं। तो वहाँ से हमें कुछ दिमाग में विचार आए थे कि हमें इस खान पान वाला जो मामला है उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, किसान के हेड से जो भी हम कर सकते हैं। मार्केट में जो चल रहा है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, मगर किसान के खेत पर हमारा कंट्रोल है। तो उस तरीके से हम इस मुहिम में लगे थे और अभी हम 40 एकड़ के अंदर धारवेड एग्रो फार्म के साथ मिलकर के प्राकृतिक खेती खुद भी कर रहे हैं और अन्य किसानों को भी हम अपने ज़िले के अंदर इसके लेकर प्रेरित कर रहे हैं।
1: तो उस समय आप 17 से पहले आप कौन कौन सी फसलें लेते थे, क्या उत्पादन रहता था?
2: 17 से पहले हम सब्जियों की फसलें भी लेते थे, बाजरा भी हमारे बेसिक खरीफ की क्रॉप है वो भी हम करते थे, गेहूँ सरसों में भी हम काम करते थे, मगर मोस्टली जो रिकमेंडेड डोज है उसके अनुसार हम काम करते थे।
1: जो सिफारिश
2: होती है एचयू की सिफारिश है या आईसीआर की सिफारिश, उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करते थे। मगर 2017 के बाद हमने बिल्कुल केमिकल फ्री पद्धति का ही चयन किया और अपने फील्ड पे उसको उतारा और धीरे धीरे उसको वाइबल किया
1: जी।
2: अभी पूर्णतः प्राकृतिक खेती के माध्यम से ही हम कर रहे हैं।
1: शुरुआत में आपने फिर किससे शुरुआत करी?
2: हमने इसका प्रशिक्षण लिया गुरुकुल कुरुक्षेत्र से
1: जी,
2: और फिर अपने फील्ड के ऊपर इसकी प्रैक्टिस शुरू करी और अन्य जो भी अनुभवी किसान इस क्षेत्र के किसान थे उनके पास हम जाते थे, उनसे सीखते थे कि भाई किस प्रकार से हम न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति प्राकृतिक खेती में करें, किस प्रकार से कीट प्रबंधन करें, हमारी जमीन का स्वास्थ्य कैसे सुधारें। उस क्षेत्र में तमाम किसानों से जो पुराने किसान पुरानी पद्धतियों से खेती करते आ रहे थे उनके अनुभव हमने कलेक्ट किए और धीरे धीरे अपने फील्ड पे अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारी जो मृदा का टेक्चर है उसके हिसाब से, पानी के टेक्चर के हिसाब से उसको ढाला और आज हम बहुत अच्छे तरीके से गो आधारित प्राकृतिक खेती 40 एकड़ में कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः जो फसलें हैं उसमें हम सीजनेबल सब्जियाँ लेते हैं, फ्रूट प्लांट हमने लगा रखे हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री पर हम काम कर रहे हैं, खरीफ में हम बाजरा, तिल, दाड़ों पे काम करते हैं, रवि के अंदर हमारे पास ट्रेडिशनल गेहूं की 10 से 12 वेराइटियाँ हैं उसके ऊपर काम करते हैं। मस्टर्ड की जो अच्छी वेराइटियाँ हैं ICR की रिसर्च है, HU की रिसर्च है, और ट्रेडिशनल भी कुछ पुरानी वेराइटियाँ उनको हम लगाते हैं प्राकृतिक रूप से।

0: और लो आरपीएम पे उसका तेल निकाल के प्रोसेस करके मार्केट में भेजते हैं। इसके अलावा और भी हमारे जितने आइटम हैं, चाहे गेहूं है, मिलट्स है, सब्जियां हैं, उन सब को प्रोसेस करके, पैकिंग करके, ग्रेडिंग सोल्डिंग करके डायरेक्ट मार्केटिंग आज हम एनसीआर के अंदर कर रहे हैं।
1: तो ये आपका किस तरह से विचार आया कि हम इसको वैल्यू एडिशन करें, यानी कि कोई ना कोई उत्पाद तैयार करके फिर बिक्री करें?
0: पहले हम, आपने जैसे जाना कि 2016 से पहले हम केमिकल खेती करते थे, उसमें
1: जी
0: ट्रेडिशनल खेती करते थे। फिर हमने देखा कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप क्यों ना की जाए, थोड़ी आमदनी इससे इंक्रीज हो,
1: बागवानी की,
0: परंपरागत खेती की बजाय बागवानी की खेती की तरफ जाएं, सब्जियों की तरफ जाएं, तो
1: जी
0: उससे हमारी भी आमदनी बढ़ेगी और रेगुलर जो इनकम का सोर्स है वो बना रहेगा। उसके साथ साथ जब मंडियों में हम जाते थे तो थोक में इन चीज़ों के रेट कम मिल पाते थे।
1: जी
0: ये किसी बड़े प्लेयर के साथ हम काम करते हैं तो वो भी आपकी जो अच्छी क्रीम ग्रेड की जो चीज़ें होती है वो ले लेता है, और जो बाकी बच जाती है उसका फिर आपको डंप करना पड़ता है, वो लॉस में जाता है। तो
1: जी
0: हमने इसको धीरे धीरे एक प्रकार से डायरेक्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की तरफ ग्रो करना शुरू किया। पहले थोड़े से कुछ लोग हमसे जुड़े थे, आज लगभग एनसीआर में दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, रेवाड़ी, धारवाड़ा की मोस्टली सोसाइटी और पोस एरिया के काफ़ी लोग हमसे जुड़ चुके हैं, और हमारा जो प्रचार प्रसार का साधन है वो भी हमारे उपभोक्ता ही हैं।
1: जी
0: हमने आज तक पैसा लगाकर किसी चैनल से, किसी भी न्यूज़पेपर से इसका प्रचार नहीं किया। जो
1: जी
0: उत्पादन हमने तैयार किया, जो ग्रेडिंग सोल्डिंग करी, जो क्वालिटी उसके अंदर दी, जो पैकेजिंग दी, उसके माध्यम से उपभोक्ताओं ने आपस में एक दूसरे को रिकमेंड किया, और आज एक अच्छा सोर्स जो धारवाड़ एग्रो फार्म पे हमारा आउटलेट है उसका माननीय श्री श्याम सिंह राणा कृषि मंत्री ने इनोग्रेट किया था, वो प्रदेश का पहला प्राकृतिक उत्पादकों का, किसान का खुद का जो स्टोर होता है वो स्टोर उन्होंने बनाया था।
1: अब थोड़ा बात करेंगे कि प्राकृतिक खेती अपनाने में बहुत से किसान भाई अभी भी थोड़ा सा संकोच करते हैं, तो उनकी जो ये शंका है कि तत्वों का किस प्रकार से समायोजन किया जाएगा, किस प्रकार से पानी का, किस प्रकार से कीट प्रबंधन किया जाएगा, वो दूसरी खेती है जो अपनी अभी जो खेती चल रही है उसमें तो दवाओं का, रसायन का प्रयोग करके और कीड़ों का नियंत्रण कर लेते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपने किस प्रकार से और कैसे बदली हैं?
0: बिल्कुल, जो किसान भाई है उनकी भी जो ये क्वेश्चन है या प्रश्न है, उनके दिमाग में आता है कि मेरा कहीं ना कहीं उत्पादन गिर जाएगा,
1: जी
0: मैं कीट प्रबंधन नहीं कर पाऊंगा, या मैं किस प्रकार से इसमें मुंह करूं, या मार्केटिंग से रिलेटेड भी बड़ी समस्या आती है कि मैं उत्पादन तो कर लूंगा जैसे तैसे, मगर इसको बेचूंगा कहाँ।
1: जी
0: इस प्रकार की समस्या आती है, उनके निदान के लिए सरकार भी अपने हेड पे काफ़ी काम कर रही है। जो हमारा अनुभव रहा है उसमें मुख्यतः हमने अपना एक अरावली किसान क्लब का संगठन हमारे रेवाड़ी ज़िले के अंदर बनाया, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सानिध्य में बना था
1: जी
0: 2023 में। तो हमने क्या किया है, उस क्लब के माध्यम से सभी ब्लॉकों में ब्लॉक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का टीम गठित की, और उस टीम के ड्यूटी लगाई कि हर गांव से पाँच पाँच छः छः दस दस जमीन किसानों को आप हमारे पास लेके आएं, जो हम आज प्राकृतिक खेती में कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में, हमारी फसलों में, वो हम उनको प्रैक्टिस में दिखाते हैं कि आपका कहीं भी प्राकृतिक खेती में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आपकी ज़मीन में नहीं आती है। अगर आप हरे खाद का प्रयोग करते हैं जिसमें ग्वार है, मूंग है, आपका ढेचा है, सण है, फूड कचरा है, इस टाइप की क्रॉप अगर आप रवि सीजन ख़त्म होने के बाद अपने ज़मीन में डालते हैं और 45 दिन में उसको रोटोवेट करते हैं, तो ज़मीन को कच्चा माल आपके हरे खाद के रूप में मिल जाता है।
1: जी
0: और जब आप जीवामृत उसको सिंचाई के साथ चलाते हैं, जीवामृत जब आप चलाओगे तो जीवाणुओं का जो भंडार आपके खेत में बनेगा उसको कच्चा माल मिलेगा, तो आपकी ज़मीन का जो ऑर्गेनिक मैटर है जिसमें सभी प्रकार के 17 तत्व पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म तत्व, और आपका जो मुख्य तत्व जो कहें आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की बात करते हैं, वो भी नेचुरल सोर्स से ही आपकी ज़मीन में तैयार हो जाती है।
1: ये जीवामृत क्या होता है, तो इसके बारे में बताएं
0: जीवामृत
1: थोड़ा।
0: मुख्य कंपोनेंट होता है प्राकृतिक खेती के अंदर। इसकी मैं बनाने की विधि भी आपको आज दर्शकों को बता देता हूँ
1: जी
0: कि आप जब जीवामृत बनाने बैठते तो आपको एक मुख्यतः देसी गाय की नीड होती है।
1: जी
0: देसी गाय जो हमारी पारंपरिक हरियाणवी देसी हो, गिर हो, थारपारकर हो, राठी हो, इसकी आप गौमूत्र लें लगभग 8 से 10 लीटर, और
1: ठीक
0: आठ
1: है
0: से दस किलो ताज़ा आप गोबर लें, एक प्लास्टिक का ड्रम लें, उसके अंदर आप 180 लीटर पानी डालें, उसमें 10 लीटर आप गौमूत्र, 8 से 10 किलो ताज़ा गोबर, 1 से 1.5 किलो बेसन, 1 से 1.5 किलो गुड़, और 100 से 150 ग्राम किसी भी सजीव जगह की जहाँ पे जीवाणु विद्यमान हो जीवित अवस्था में, वो 100 से 150 ग्राम मिट्टी उठाकर उस ड्रम में डालें और उसको घड़ी की सुई की तरह डंडे से हिलाएं,
1: ठीक है
0: जालीदार कपड़े में उसको बांध करके छाया की जगह में आप रख दें।
1: ठीक है
0: ड्रम आपने किसी मेटल का नहीं लेना है, या तो प्लास्टिक का हो या चीनी मिट्टी का हो, ताकि

0: उसमें और कोई जो मेटल है वो मिक्स ना हो।
1: धातु का नहीं लेना,
0: धातु
1: लोहे
0: का
1: का
0: नहीं
1: नहीं
0: लेना
1: लेना
0: है, लोहे का
1: विशेषतः।
0: नहीं लेना है बिल्कुल,
1: जी
0: या चीनी मिट्टी का या प्लास्टिक का।
1: ठीक
0: तो
1: है
0: ये खाद आपका 48 घंटे में गर्मियों के दिनों में तैयार हो जाएगा, 200 लीटर, जो कि
1: ठीक।
0: 1 किले के लिए सफिशेंट है।
1: अच्छा, तैयार होने का क्या संकेत रहेगा?
0: तैयार होने का संकेत, इसमें थोड़ी मैनी मैनी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, और
1: जी
0: जितना आपका गोबर का वेस्ट है बैक्टीरिया, वो आपस में 48 घंटे में गर्मी में आराम से मिक्स होकर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सर्दी का टाइम होता है तो ये लगभग 72 घंटा ले लेता है तैयार होने में।
1: जी
0: फिर किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको आप प्रयोग कर लें, क्योंकि इसकी जो सेल्फ लाइफ है, इसकी वैलिडिटी है, वो 1 हफ्ते की है। उसके बाद इसके जो डेड सेल्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी और लाइव सेल्स कम होना शुरू हो जाएगा, तो इसका जो ज़मीन पे प्रभाव दिखना चाहिए वो कम निकलेगा। तो आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको प्रयोग कर लें।
1: अब प्रयोग कैसे करें?
0: जब आप पानी सिंचाई चलाएं अपने खेत में, आपने मान लो गेहूं लगा रखे हैं, सरसों लगा रखे हैं, उसमें जब भी आप चाहे फुहारा विधि से पानी दे रहे हैं, चाहे टपका सिंचाई से दे रहे हैं, चाहे खुला आप पानी दे रहे हैं, तो उसके साथ इसको इरिगेट कर दें। वेंचुरी
1: अगर
0: से
1: पड़ेवा करना हो तो
0: पड़ेवा करना है, खुला पानी आप चला रहे हैं, तो आप जहाँ से आपके खेत के अंदर पानी का स्रोत जाता है उस पे, उस ड्रम की नीचे लगा करके एक टोंटी को हाफ खोल दें और धीरे धीरे पूरे खेत के अंदर पानी के साथ उसको जाने दें। जब वो पूरे खेत में चला जाएगा तो वो एक बैक्टीरिया होगी, जो जीवाणु होते हैं उनकी अथाह संख्या आपके खेत में खड़ी कर देगा,
1: जी
0: जो कि फसल अवशेषों को खाएगी, हरे खाद को खाएगी और ऑर्गेनिक मैटर को ग्रो करेगी।
1: तो ये हर पानी के ऊपर करना पड़ेगा।
0: ये हर पानी पे भी आप दे सकते हैं, या अल्टरनेट एक पानी छोड़ के दूसरे पानी के साथ भी आप दे सकते हैं। इसकी अधिकता या निम्नता कहीं भी कोई नुकसानदेह नहीं है आपकी फसल में, ये इको फ्रेंडली कंपोनेंट है।
1: जी
0: और जीवामृत जितना आप अच्छा, जितना जल्दी चलाओगे, उतना ही जल्दी आपकी ज़मीन का टेक्चर है वो चेंज हो जाएगा, ज़मीन में स्पंजीपन आ जाएगा, अर्थवॉर्म्स आ जाएंगे, जो स्वदेशी केंचुए आप पहले देखते थे वो आपकी ज़मीन में आ जाएंगे।
1: जी
0: और जितना आप उसमें फसल लगाएंगे, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसको पूरी करने का वो काम करता है।
1: तो क्या इससे सभी तत्वों की कमी पूर्ति हो जाती है, हमें खाद नहीं डालनी पड़ेगी?
0: जीवामृत बेसिकली एक ज़मीन को एक्टिवेटर का काम करता है, ये खाद नहीं है। ज़मीन में जितने भी पोषक तत्वों की कमी है उनको एक्टिवेट कर देगा, और जितना पौधे को चाहिए उसकी जड़ों तक पहुंचाने का ये काम करेगा।
1: जी
0: जितना जीवामृत इसमें चलाया जाएगा ज़मीन में, उतने जीवाणु बढ़ेंगे, जितने जीवाणु बढ़ेंगे उतने स्वदेशी केंचुए बढ़ेंगे, और स्वदेशी केंचुए जब मिट्टी को खा करके निकालेंगे वेस्ट के रूप में, तो जितने पोषक तत्व तो आप पैसे में बाहर से सिंथेटिक ला करके डालते हो, वो प्राकृतिक रूप से आपकी ज़मीन में तैयार हो जाएंगे।
1: जी अब जो तत्व, जरूरी आवश्यक तत्व होते हैं पौधे के लिए, उनके लिए फिर क्या विधि अपनानी चाहिए?
0: इसमें 17 प्रकार के सूक्ष्म तत्व, जैसे कैल्शियम, बोरोन, नाइट्रोजन, कैल्शियम नाइट्रेट, कई तरीके की चीज़ें 17 टाइप के होते हैं, उनकी जो पूर्ति होती है, जैसे मैंने बताया नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस की पूर्ति जब मिट्टी को खा के निकालेंगे तो उसके अंदर विद्यमान काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, वो पौधे तक पहुंच जाएगी। अब
1: ठीक
0: सूक्ष्म
1: है।
0: तत्वों की बात आती है, तो जब केंचुए बढ़ते हैं ज़मीन में तो वो मरते भी हैं, उनकी सेल्फ लाइफ है, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में वो मरेंगे, और जब मरेंगे तो उनका जो शरीर का वेस्ट है वो जो मिट्टी में कंपोस्ट होगा, तो उस शरीर के अंदर परमपिता परमात्मा ने वो 17 के 17 पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से दिए हुए हैं। तो जितनी अथाह संख्या में आपके खेत में वो चीज़ें बढ़ेंगी, रिसाइकलिंग होगी, तो आपको जो पोषक तत्व चाहिए वो वहीं की वहीं पूर्ति हो जाती है।
1: यानी कि कोई ऊपर से कोई पोषक तत्वों के लिए कोई और उसमें कुछ नहीं डालना?
0: प्राकृतिक खेती में कहीं भी किसी प्राइवेट इनपुट का, बायो इनपुट का या वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता ही नहीं होती है। आप
1: ठीक
0: फसल
1: है।
0: अवशेष को कंपोस्ट करें, हरे खाद का प्रयोग करें, जीवामृत घन जीवामृत का प्रयोग करें,
1: अब
0: आपकी
1: जैसे
0: ज़मीन का टेक्सचर बहुत बढ़िया हो
1: जैसे
0: जाएगा।
1: कई बार ये बताया जाता है कि बिजाई से पहले बीज को उपचार करना है, तो उसके लिए क्या तरीका रहता
0: उसके
1: है?
0: अंदर बीजामृत एक कंपोनेंट होता है
1: जी
0: प्राकृतिक खेती के अंदर, उसमें ऑलमोस्ट आइटम तो यही होते हैं, गोबर, गौमूत्र, मिट्टी, बाकी उसमें एक चूने का प्रयोग और किया जाता है, जो भुजा हुआ चूना होता है, ताकि जो बीज
1: कड़ी
0: है,
1: जिसको
0: कली
1: बोलते
0: बोला
1: हैं।
0: जाता है
1: जी
0: एक्चुअली, तो उसका एक प्रयोजन ये होता है कि जो आपके बीज में बैक्टीरियल डिजीज आती हैं, फंगल डिजीज आती हैं, तना गलने की डिजीज आती हैं, उनको वो कवर करके रखेगा। आप बीजामृत से ट्रीट करें, चाहे आप गेहूं बो रहे हो, चाहे आप दाल बो रहे हैं, चाहे आप सब्जियों पर काम कर रहे हैं, बीजामृत 2 से 3 1 से 1.5 दिन पहले आप तैयार करें, और
1: कैसे
0: तैयार
1: तैयार?
0: करने के बाद उसको आप कोटिंग करें, और कोटिंग करने के बाद आप उसका बिजाई आराम से करें सुखा करके।
1: तो उसमें कितनी मात्रा लेनी पड़ेगी?
0: जो बीजामृत है उसके अंदर 1 से 1.5 लीटर आपने गौमूत्र लेना होता है, आधा किलो के लगभग आपका गोबर होता है, और इसमें 10 से 15 ग्राम भुजा हुआ आपने चूना डाला।

0: इन सब का घोल बनाएं, जितना आपका बीज है उस हिसाब से उसके अंदर पानी को ऐड करें और उसको मिक्स करके पहले दिन बिजाई से पहले दिन ही उसको शोधित कर लें, फिर उसको सुखा लें, सुखाने के बाद आप उसमें बिजाई कर सकते हैं।
1: जी, अब बात आती है कि जब फसल बड़ी होती है तो उसमें कीड़े हैं, बीमारी हैं, उनका भी प्रकोप हो जाता है, तो उसके उपचार के लिए
0: हमने संजय जी पिछले 17 से लेकर आज तक जो अनुभव किया है, चाहे
1: जी
0: वो सब्जियों की क्रॉप हो, चाहे फल वाली क्रॉप हो, चाहे हमारी सीजनेबल गेहूं की क्रॉप हो, जब आपकी ज़मीन का स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है तो 80% जो बीमारियां हैं कीटों से संबंधित है, चाहे फंगल से संबंधित है, चाहे बैक्टीरियल डिजीज से संबंधित है, वो सारी की सारी पौधे में तब आती है जब उसको न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी होती है या किसी की
1: तत्वों
0: अधिकता
1: की कमी
0: होती है,
1: होती है जी।
0: तब ही उसके अंदर कोई बीमारी आती है। तो जैसे प्राकृतिक खेती से आपकी ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर बढ़िया हो जाएगा और उसके पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, तो मोस्टली 80% जो बीमारी है वो तो वैसे ही दूर रहेगी। अगर फिर भी कुछ आती है तो हम सीधा सीधा निवारण करते हैं, बीज को शोधित करके लगाते हैं जिससे बैक्टीरियल और फंगल डिजीज भी दूर रहती है। इसके अलावा हम नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दसपर्णियारक, इस टाइप के नीम के कंटेंट जिसके अंदर होते हैं, नीम की निहोड़ी होती हैं, पत्ते होते हैं, हरी मिर्च का पेस्ट होता है, अदरक का पेस्ट होता है, गौमूत्र होता है, उनको फर्मेंट करके उनका स्प्रे टाइम टाइम पे सिंचाई के बाद आप अपनी फसलों पे लगाते हैं, तो उसका प्रयोजन क्या होता है कि वो किसी भी कीट को मारने का काम नहीं करते हैं, आपकी फसल के अंदर एक ऐसी स्मेल क्रिएट कर देंगे कि जो कीट हैं वो वहाँ ना तो अंडे देंगे और ना आपकी फसल को खाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो सुरक्षित फसल है वो आपके हाथ में आ जाएगी, किसी प्रकार का कीटों का कोई आपके फसल पे नुकसान नहीं होगा।
1: जी, तो आपके साथ में कितने किसान भाई जुड़े हैं?
0: अभी हम बात करें तो हमने 40 एकड़ से प्राकृतिक खेती शुरू करी थी, अभी और हमने 15 से 20 एकड़ उसमें और ऐड करे हैं जो हम पिछले 2 साल से चेंज करते ला रहे हैं।
1: जी,
0: 55 से 60 एकड़ तो हम खुद कर रहे हैं। हमारे अरावली किसान क्लब के साथ लगभग 1200 फार्मर जिला रेवाड़ी से जुड़े हुए हैं, उसमें से 150 से 200 किसान पूर्णतः प्राकृतिक खेती आज कर रहे हैं, और अरावली किसान क्लब और हमारे फार्म के प्लेटफॉर्म से वो डायरेक्ट सीधे तौर पे किसान के खेत से उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचाने का काम भी वो कर रहे हैं।
1: जी, तो आपके पास तो क्योंकि दिल्ली नज़दीक लगती है, लेकिन जो हमारे दूर के इलाके हैं उन भाइयों को बिक्री के लिए किस तरह से फिर प्रबंध किया जाए?
0: हम देखते हैं कि वैसे तो प्रदेश भर से हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए हैं, हम देखते भी काफ़ी साथियों के साथ मार्केटिंग की दिक्कत आती है, मगर आज हम देखें आबादी कितनी बढ़ती जा रही है और हर गांव में से एक भाई अगर किसानी कर रहा है तो दूसरा भाई टीचर है, तीसरा भाई लेक्चरर है। अगर वो लेक्चरर और टीचर जो भाई शहर में रह रहा है वो MP शरबती लेकर के खा रहा है, तो वो अपने उस किसान भाई को सपोर्ट क्यों ना करे कि भाई आप आधे एकड़ में, एक एकड़ में केमिकल फ्री आप गेहूँ तैयार कर दें, आप दाड़े तैयार कर दें, और जो मार्केट रेट बनता है प्रीमियम हम आपको देंगे और आपसे हम लेंगे। तो इसमें उपभोक्ताओं की जागरूकता बड़ी अहम रोल अदा करती है। सरकार कोशिशें कर रही है मगर वो सारी कोशिशें सरकार से ही सफल नहीं होनी है, कुछ किसान ने अपने हेड पे भी काम करना है। आज संजय जी हम देखते हैं कि किसानों के आपके गांव हैं, गांव में बेसिकली सब्जी बेचने वाले सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 से 8 बजे तक एक गाड़ी जाती है, दूसरी गाड़ी आती है लाउड स्पीकर के साथ
1: जी,
0: वो सब्जियां गांव में ही कंजेप्ट हो रही है। तो जब हम प्राकृतिक खेती करने आते हैं तो उसके लिए हमें क्यों सोचना कि हम किसी 5-स्टार मॉल में ही बेचेंगे उसको या किसी पोस्ट एरिया के अंदर ही जाके बेचेंगे, कंज्यूमर तो हमारे गांव में भी है। तो हमारे गांव के कंज्यूमरों को सोचना चाहिए कि जो भाई जहर मुक्त खेती करके सब्जी तैयार कर रहा है, गन्ने तैयार कर रहा है या धान तैयार कर रहा है, उसका सहयोग करा जाए।
1: यशपाल भाई, इसमें ये देखा गया कि किसान क्योंकि उसके पास में सारे काम अकेला ही वही करता है, उसने खेत भी संभालना है और खेत में जो डलने वाली चीज़ें हैं उनका भी प्रबंध करना है, इस सब में उसको मार्केटिंग में बड़ी दिक्कत आती है। एक तो स्वभाव इतना शर्मीला होता है कि वो जल्दी से मोल भाव नहीं करता है और बाज़ार में उसकी बेचने की इतनी एक्सपर्टाइज नहीं है, इतनी इतना ज्ञान नहीं है, वो तो वो बाहर जाके
0: ये बात
1: बेचने।
0: बिल्कुल आपकी वाजिब है कि हमारे जो 80% किसान हैं
1: जी
0: वो खेत में पूरे होशो आवाज से जोश से
1: जी
0: 6 महीना मेहनत कर सकते हैं, मगर जब बात आती है बिक्री की तो मंडी में हम सब्जी मंडी में देखते हैं कि सुबह 15 मिनट वो रुक नहीं सकते, अपना पूरा 6 महीने की मेहनत को आड़ती के पास छोड़ देते हैं, भाई तू जाने तेरा काम जाने, बंदा बेचे सस्ता बेचे, और वो बंदे उल्ट वापिस आ जाते हैं
1: जी।
0: काफ़ी इसमें इश्यूज होते हैं, उनको आके खेत पे काम भी करना होता है, पानी भी देखना होता है, लाइट के भी टाइमिंग होती है, उनकी मजबूरियाँ भी हैं
1: जी,
0: मगर इस चीज़ को अगर सोल्व कर सकता है तो

0: सहकारिता। हर किसान मार्केट नहीं कर सकता, हर किसान ग्रो नहीं कर सकता, हर किसान प्रोसेसिंग में एक्सपर्ट नहीं है, हर किसान पैकेजिंग में एक्सपर्ट नहीं है। अब अरावली किसान क्लब ने क्या किया है अपने ज़िले में, जितने भी फार्मर थे जो गांव के कोनों में काम कर रहे थे, छोटे काश्तकार थे, अनपढ़ थे बेचारे, सोशल मीडिया से टच में नहीं थे, उन किसानों को खोजा है कि प्राकृतिक खेती वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं मगर उनको उनके उत्पादन का रेट नहीं मिल रहा। तो आज धारवेड एग्रो फार्म के साथ मिलकर अरावली किसान अपने ब्लॉक अध्यक्षों के साथ उनको मॉनिटर करता है कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं, यहाँ ठीक कर रहे हैं, इस चीज़ों में आप सुधार करें, और उनका जितना अच्छा उत्पादन होता है उसको प्रीमियम रेट दे करके वो उठाते हैं, अपने फार्म पे ग्रेडिंग सोल्डिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं और उसको बेचते हैं। यही सहकारिता है। तो इसमें कोई पशुधन रखने वाला किसान है उसकी छाय से लेके दूध से लेके घी से लेके दही तक भी बिकने का प्रावधान हो जाता है, कोई बी कीपर है उसका हनी भी बिकता है। तो इसमें सहकारिता बहुत ज़रूरी है। हर ज़िले के अंदर ऐसे जो पढ़े लिखे किसान हैं, युवा किसान हैं, उनको आगे आना चाहिए और अपने ज़िले में एक अच्छे तरीके से मॉनिटर करके जो सीरियसली प्राकृतिक खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको तैयार करें, उनका ग्रुप बनाएं और उनसे पहले डिटेल लें कि आप कितने क्षेत्र में कर रहे हैं, क्या क्या आप फसल लगा रहे हैं, कितना उत्पादन होगा, कितना आप अपने घर उपयोग के लिए रखेंगे, कितना एक्स्ट्रा मार्केटिंग के लिए आपके पास है, उसका डाटा कलेक्ट करें और उसको प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करें। इसमें अरावली किसान क्लब आपकी सहायता कर सकता है। जिस तरीके से हमने स्ट्रक्चर खड़ा किया है, कोई भी किसान प्रदेश का हमसे संपर्क करे, आए, हमारी जो कार्यशैली उसको देखे और उसमें से जो उसको अच्छा लगे अपने क्षेत्र के हिसाब से उसको अडॉप्ट करे, तो सहकारिता इसमें बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है, मेरा मानना है।
1: जी यशपाल भाई, जब रासायनिक खेती से ऑर्गेनिक तरफ जाते हैं या प्राकृतिक की तरफ जाते हैं तो एक बार थोड़ा सा उत्पादन में कमी आती है, तो किसान इस बात को बहुत महसूस करता है कि मैंने ये ऑर्गेनिक किया है या प्राकृतिक की तरफ मैं गया हूँ तो मेरे उत्पादन में कमी आई है, और वो एक साल में उसकी भरपाई हो नहीं पाती और इतना उसके पास में क्षमता होती नहीं कि उस कमी को वो महसूस कर सके या झेल सके।
0: ये जो आज हम मार्केट में सुनते हैं कि जी ऑर्गेनिक केमिकल से हम इतनी पैदा ले रहे हैं और जब हम प्राकृतिक की तरफ हम मुँह करेंगे तो हमारा उत्पादन घट जाएगा,
1: जी
0: वो पूरा एक मॉनिटरिंग का विषय है संजय जी।
1: जी
0: अकेला उत्पादन नहीं घटता है, साथ साथ आपके खर्चे भी घटते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आप प्राकृतिक खेती तरीके से कर रहे हैं, तो 6 महीने से साल के अंदर आपकी जो पैदावार केमिकल में आती है उसके 80% को आप छू जाते हो। अब हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। आप लोग 306 गेहूँ करते हैं, सारे किसान भाई आज अपने को सुन रहे हैं, 306 गेहूँ अगर रासायनिक तौर से किया जाए तो उसकी पोटेंशियल वैल्यू है 12 से 13 क्विंटल, 14 क्विंटल, इससे ऊपर आज तक नहीं झड़ा है। अगर आप ज़्यादा केमिकल उसमें डालोगे, आप ज़्यादा उसमें यूरिया डालोगे तो वो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा ले लेगा और गिर जाएगा,
1: बढ़वा ज़्यादा हो जाएगी,
0: उसका जो दाना है उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। यही होता है। अगर प्राकृतिक रूप से भी जो किसान भाई कर रहे हैं, आज हम महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक सब किसानों के संपर्क में देखते हैं, प्राकृतिक रूप से सोना मोती 306 बंसी ट्रेडिशनल वेराइटियाँ जो भी गेहूं का कर रहे हैं वो सारे 13 से 14 क्विंटल पैदावार ले रहे हैं। तो मेरा मानना ये है, समझ में आ रहा है किसानों के, कि अगर ट्रेडिशनल वेराइटी आप कर रहे हो तो 13-14 क्विंटल आप प्राकृतिक में ले रहे हो और 13-14 क्विंटल आप केमिकल में ले रहे हो। प्राकृतिक में आपका जो यील्ड है वो खड़ी रहती है, गिरती नहीं है, आपके दाने की क्वालिटी अच्छी है, पोषक तत्वों की क्वालिटी अच्छी है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट कम हुई, पैदावार आपकी बराबर आई और मार्केट में आपके खरीदार ज़्यादा हुए। जहाँ केमिकल वाले 306 को मंडी में आप घेर के आते हो 3200-3000 में, वहाँ सोना मोती आज 15-15 हज़ार बिक रहा है किसानों का प्रदेश में।
1: यानी कि उसमें अगर उत्पादन थोड़ा बहुत कम होता है तो उसके भाव के साथ कंपनसेट किया जा सकता है,
0: भाव के साथ भी कंपनसेट अच्छा कर सकते हैं और साथ साथ आपकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी कम हो रही है, आपका रिस्क है वो भी मैनेजमेंट में हो रहा है। हमने अनुभव किया है, आपके जितने भी गेहूँ की वैरायटियाँ हैं, आपकी बार तो परमपिता परमात्मा ने ऐसे टाइम पे बारिश की है कि गेहूं का क्लाइमेट ठीक रह गया
1: जी।
0: अब कई बार क्या होता है कि फरवरी एंड में आकर के गर्मी स्टार्ट हो जाती है और जिन जमीनों के अंदर यूरिया अत्यधिक मात्रा में डाला गया है उनमें से हवा निकलनी शुरू हो जाती है, आप देखते हो कि गेहूं उखड़ गए। क्यों उखड़ गए? क्योंकि जमीन में यूरिया था, टेम्परेचर अत्यधिक हो गया अचानक और वो स्पोर्ट करनी जमीन छोड़ गई, तो उसमें जो नमी होती थी वो नरेगी खत्म हो गई और प्रोडक्शन हल्की होगी। जबकि प्राकृतिक खेती में लंबे टाइम तक नमी आपकी ज़मीन में रहती है, कितनी भी गर्म हवाएं चल लें, अचानक मौसम का बदलाव आ जाए वो आपकी फसल को सपोर्ट करेगा और पूरे पकाव के साथ आप तक पहुंचाने का काम करता है। ये अनुभव हमने रेतीली ज़मीन में किया है, तो जो ज़मीन अच्छी है सरसाई के क्षेत्र की है उसमें तो बहुत ही अद्भुत रिजल्ट हैं इसके
1: जी। तो इसमें आप बिक्री करते हैं,

0: आपने बताया कि आसपास का जो इलाका है उसमें आप बेचते हैं, तो उससे आपके कितना फायदा होता है, कितना प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, ताकि दूसरे भाई इस तरफ बढ़ सके।
1: वैसे तो जब आप एक इंडिविजुअल किसान के परिप्रेक्ष्य से सोचते हैं, तो जहां आपका गेहूं 3,000 रुपये बिक रहा है,
0: जी
1: तो जब आप आटा प्रोसेस करके पैक करके मार्केट में ले जाते हैं, तो 6,500 रुपये तक भी आपका क्विंटल का रेट मिल जाता है। 6,500 रुपये किलो का आज हम गेहूं बेच रहे हैं, आटा बेच रहे हैं।
0: जी
1: अगर इसी प्रोफार्मे को हम सहकारिता में सोचें, तो थोड़ा प्रॉफिट हमें इसमें कम करना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस मुहिम को पहुँचा पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को हम रिटेल मार्केट में बेच पाएँ। तो उसमें अगर हम 3,000 की चीज़ को 5,000 तक भी बेच रहे हैं, तो भी आपका प्रॉफिट है। काफ़ी कॉन्सेप्ट हमने ऐसे देखे हैं कि किसानों से बंदे 60 रुपये किलो सब्जी प्राकृतिक उठा रहे हैं। कोई भी सब्जी हो, किसी टमाटर हो, घिया हो, लौकी हो, 60 रुपये से उठाते हैं और 100 रुपये में मार्केट में बेच रहे हैं।
0: जी
1: 40 रुपये मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, सोल्डिंग एक्सपेंसिस का उसमें होता है, और बाकी 60 रुपये किसान को वो दे रहे हैं। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे आप काम करोगे, तो बहुत ज़्यादा किसानों को फ़ायदा होगा और मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ेगी। आप थोड़ी चीज़ का बहुत ज़्यादा मूल्य लेके चलोगे, तो एक एक्सपेंसिव सी चीज़ हो जाएगी, आम आदमी की पहुंच से वो बाहर हो जाएगी। तो हमें प्राकृतिक उत्पादनों को आम आदमी से लेकर, मिडिल तबके से लेकर हायर लोगों तक, सबको इक्वल देने का काम करना चाहिए।
0: यशपाल भाई, इसमें एक बात और आती है कि जब कहते हैं भाई ये प्राकृतिक है या ऑर्गेनिक हमने हमारा उत्पाद है, तो उसमें सबसे पहले बात आती भाई आप कैसे कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक है।
1: विश्वसनीयता,
0: अब वो जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर ISI मार्क है, PO है, इस तरह के जो लिखा होता है, तो इस तरह का एक विश्वास जमाने के लिए क्या कोई सर्टिफिकेशन का प्रोसेस किया जाता है?
1: बिल्कुल। इसमें प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, आपको PGS इंडिया या इस प्रकार की काफ़ी जो RCs हैं, उनके माध्यम से रजिस्टर्ड करने की कोशिश कर रही है। आज काफ़ी किसान इसमें रजिस्टर्ड हो भी चुके हैं, रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें किसान भाइयों को आगे आकर के अपना जो रकबा है, कितने साल से कर रहे हैं, क्या क्रॉप कर रहे हैं, किस टाइप के चैलेंजेस आ रहे हैं, वो उसके अंदर डालें, अपने आप को सर्टिफाइड करवाएं, अपनी लैंड को सर्टिफाइड करवाएं। उससे आपकी विश्वसनीयता प्रशासनिक रूप से बढ़ जाती है। बाकी इसके अलावा जब आप सहकारिता में काम करते हो, तो एक दूसरे किसान की आप मॉनिटरिंग के अंदर होते हैं, तो आपका जो FPO है या आपका क्लब है, वो भी आपकी विश्वसनीयता के ऊपर मोहर लगाता है कि ये जो किसान है भाई लंबे टाइम से अच्छा काम कर रहा है और इसका उत्पादन बिल्कुल जहर मुक्त है। तो
0: जी
1: आपसी सहयोग से भी वो चीज़ें आगे बढ़ सकती है, और प्रशासनिक रूप से हमें सर्टिफिकेशन तो करवाना ही चाहिए इसका।
0: जी तो यशपाल भाई, आपको लगभग 10 वर्ष हो गए हैं, तो इन 10 वर्षों में आपकी और क्या कुछ उपलब्धि रही है?
1: मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही रही है कि हम पिछले 8-9 साल से लगातार 2-3 बार तो आपके किसानों से, आपके माध्यम से रूबरू हो चुके हैं। ये मेरा
0: जी
1: बड़ा खुशी का विषय रहता है कि हम किसानों से, आने वाली पीढ़ियों से, महिलाओं से, उपभोक्ताओं से टच में रहते हैं।
0: जी
1: ये सामाजिक तौर पे हमारी जो प्रतिष्ठा है वो प्राकृतिक खेती से बढ़ी है। इसके अलावा आपका जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार है, इसने 2024 में 23 मार्च को मेरे को किसान रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया, जो
0: जी
1: एक किसान का लक्ष्य होता है कि मैं मेरे प्रदेश के किसान रत्नों में एक गिना जाऊं।
0: जी
1: तो HU हिसार ने हमें किसान रत्न दिया। ICAR पूसा दिल्ली ने नवोचारी किसान का अवार्ड मेरे को अभी 2026 में दिया। इन सब उपलब्धियों को देखते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी ने 2026 में जो गणतंत्र दिवस हुआ था, 26 जनवरी पे होता है, उसके बाद एक एट होम प्रोग्राम का आयोजन शाम के टाइम राष्ट्रपति भवन में किया जाता है,
0: जी
1: उसमें भी हमें एक विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। तो हमारे लिए, किसान कम्युनिटी के आदमियों के लिए, तो बड़ा खुशी का और गर्व का विषय है कि हमें देश की प्रतिष्ठित जो महिला है, फर्स्ट लेडी है, वो अपने इवेंट में इतने प्रतिष्ठित लोगों के बीच बुलाती है। वहाँ पे डिप्लोमेस्ट होते हैं, डेमोक्रेसी के लोग होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ऑल ओवर जो इंडस्ट्री काम देश में करती हैं, सबके प्रतिष्ठित लोगों से हमें मिलने का मौका मिला, उनके अनुभव सीखने का मौका मिला। तो ऐसे तमाम अप्रिसिएशन है जो गवर्नमेंट ने दिए, समाज ने दिए, और आज एक अच्छा उपभोक्ताओं के अंदर विश्वसनीय ब्रांड बन के भी हम खड़े हुए हैं। तो अन्य किसानों का जो काम है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, प्रशिक्षण की प्रॉब्लम्स है, उनमें हम कहीं ना कहीं एक भूमिका निभा पा रहे हैं। इसके लिए हम परमपिता परमात्मा का एक अच्छा आशीर्वाद हम अपने ऊपर मानते हैं।
0: जी बहुत अच्छा, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इन उपलब्धियों के लिए, और आगे भी आप इसी तरह से प्रयास करते रहें और जो किसान भाई हैं उनकी मदद करें, ताकि वो भी आपके इस राह पर, आपके इस कदम पर चल सकें। तो इस बातचीत में भाग लेने के लिए यशपाल खोला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: और भाई

hari

dan mati.

धर्म का सौदा बद ज्यादा।

भैया दर्शनी भैया ने रागनी, गायक कलाकार थे महावीर चोपड़ा और उनके साथी। और भाई यो है कि देखो मौसम ऐसा चल रहा है कि धूप ज़्यादा तेज़ धूप निकला है, मौसम परिवर्तनशील भी है भाई, कितने तेज़ हवा भी चल जाए हैं, बूंदाबांदी भी हो जाए है, तो इसे में थोड़ा हाँ अपना पशुधन का भी सही तरीके ध्यान रखें भाई। न्यू नहीं है कि मौसम बादलवाई का है भाई, बाहर बंद रहे हैं तो थोड़ा हाँ ध्यान रखें कि किसी टाइम भी कड़ा चमका भी लिकड़ सके है, तो इसमें अपना भी बच्चों का भी खान पान का भी और सही तरीके अपना ध्यान रखें। और इस जानने के साथ भाई घड़ी का ना देखें कि कृषि जगत कार्यक्रम का समय हुआ हाड़े समाप्त, आगे सुनेंगे भाई कार्यक्रम ग्रामीण संसार आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र, और ये भी सुनेंगे भाई कार्यक्रम ग्रामीण संसार। और भाई ग्रामीण संसार में आज बुधवार है और भाई बारी है फोन इन कार्यक्रम की बालक मंडली की, जो बच्चा प्रोग्राम हो है भाई बच्चे इसमें अपना जो अब तो छुट्टी भी चल रही है भाई, कोई भी अपनी कविता है शिक्षा पर कोई भी बात है वो अपनी बताएं। कविता जो है बच्चों को एक ऐसा मंच मिल जाए है जिसमें बच्चा की झिझक भी दूर हुआ है और बच्चे इसमें बोलकर ने अच्छी जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी प्रेरणा मिला है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं उनमें थोड़ा हाँ झिझक होती है बोलने की, तो इसे माध्यम के द्वारा बच्चे जब कुछ सुनाओगे तो दूसरे देख कर उनमें भी हौसला बढ़ेगा और अच्छी तरीके से उनमें भी बोलने की थोड़ी तमीज़ और तहजीब दोनों चीज़ें आऊँगी, और हो थोड़ा हाँ अपना के पढ़ाई से रिलेटेड जो अपना शिक्षा पर कोई कविता है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा प्रसंग है, कोई श्लोक है, वो इस तरह के जो है सुनाएं ताकि और बच्चा पर भी सही प्रभाव पड़े और उनका भी थोड़ा हाँ बोलने का दूसरे ने देख कर या सुन कर ने उनको भी ये महसूस हो कि हमें भी कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि रेडियो ऐसा मंच है जो दूर दूर तक पहुँचता है और हर जनमानस के हृदय तक छू लेता है, क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम अपनी बातें भी रख सके हैं और जो जितने भी शिक्षा पर जो कार्यक्रम हैं उनके द्वारा बहुत सी सीख भी ले सके हैं, क्योंकि जन जन तक पहुंचने वाला एक ऐसा साधन है। तो भाई बुधवार कई जालिए थे, इनमें थोड़ा हा मौका नहीं क्योंकि दूसरे जो प्रोग्राम थे प्रायोजित में आ जाए थे, तो आज छोटे बच्चा प्रोग्राम है फोन इन कार्यक्रम है, छोटे बच्चे फोन करके ने अपनी कविताएं सुना सके हैं, तो बच्चों को एक बार अपने टेलीफोन नंबर हम फिर दोहरा दे हैं भाई, रोहतक का जो एसटीडी

0: कोड है वो 0 12 62, और जो हमारी टेलीफोन लाइनें जो चालू रहेंगी 255 446, 255 447 और 255 448, इन लाइन पर बच्चे फ़ोन करें, कोई भी शिक्षा पर दे कुछ भी सुनाना चाहते हैं बच्चे वो सुनावें, अपने छोटे भाई बहन हैं उनसे भी बोलने की या बात करने की कोशिश करवाएं ताकि वो भी बोलें और बोलना सीखें। तो वे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ बोलो बेटे। हेलो हेलो हेलो हेलो, लगता है आवाज़ नहीं पहुंची। अगला देखते हैं। हेलो हेलो, हाँ नाम बताओ बेटा।
1: अंकल जी नमस्ते।
0: नमस्ते बेटे, कहाँ से बोल रहे हैं? लगता है संपर्क कट गया है। हेलो हेलो हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ नाम बताओ बेटा।
1: अंकल नमस्ते।
0: नमस्ते बेटे, नाम बताओ।
1: अंकल मेरा नाम राधिका है।
0: राधिका, कहाँ से बोल रहे बेटे?
1: अंकल गाँव मायना।
0: गाँव मायना, कौन सी क्लास में पढ़ते हो अबे?
1: अंकल 8th में।
0: 8th में, छुट्टियाँ चल रही होंगी?
1: हाँ अंकल।
0: काम हो गया स्कूल का?
1: हाँ अंकल।
0: चलो आज क्या सुनाने के मन में आई बेटा?
1: अंकल गीत।
0: गीत सुनाओ बेटा।

जान लुकैया में, मेरा कब्जा धरा है सखियाड़े में ही, मेरी नंद पकड़ा जाइए, तेरा पीरा गया रियाज रोसे में, तेरे बीरा की मरोड़ मेरे ठोसे में, मेरा चुंदड़

0: मैं तेरे बीरा की मरोड़ मेरे ठोसे मैं। थैंक यू अंकल। अंकल मेरा भाई भी बात करना
1: हाँ
0: चाहता है।
1: कराओ
0: हेलो।
1: कराओ बेटे, बात कराओ।
0: अरे
1: हाँ नाम बताओ बेटा।
0: ठीक
1: ऋतिक, कौन सी क्लास में पढ़ते हो
0: अंकल,
1: बेटा?
0: नमस्ते अंकल,
1: नमस्ते
0: नमस्ते। रुकना
1: नमस्ते, भूल गए थे। अच्छा अब बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाँ कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? केजी में? हेलो हेलो, लगता है संपर्क कट गया। हेलो हेलो,
0: हेलो।
1: हाँ नाम बताओ बेटा।
0: अंकल नमस्ते।
1: नमस्ते बेटे, नाम बताओ।
0: नाम अनीस है, बनवासा
1: अनीश, कहाँ से बोल रहे हो भाई? अनीश
0: से, सेकंड
1: बनवासा से। कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
0: वे।
1: सेकंड में। आज के लिए क्या तैयारी कर रखी भाई?
0: पोएम सुनाना चाहता हूँ।
1: अच्छा पोएम सुनाओ भाई।
0: उठो लाल बाखे खोलो पानी लाए डोलो पीटी रात का बादल फूले के ऊपर बोरे झूले। थैंक यू। धन्यवाद
1: शाबाश, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया।
0: अंकल।
1: धन्यवाद भाई, धन्यवाद धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो। तो भाई देखो, बहुत अच्छी बात है कि बच्चे जो अपनी संस्कृति को भी संजोए हुए हैं। और हेलो हेलो हेलो,

0: हेलो।
1: लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो देखो, जो भी है शिक्षा पर बातें हैं, और गुड़िया ने गीत सुना जो हरियाणवी जो संस्कृति को दर्शाता है। और अपनी हरियाणवी संस्कृति अभी देखो, इसका तो कोई सानी है ही नहीं। कोई भी बातें हैं, आजकल जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने जो गाने हैं, उनका बहुत प्रचलन। एक फोन, हेलो।
0: हेलो,
1: हाँ, नाम बताओ बेटा।
0: नाम के पासनी जिला चरखी दादरी। इस
1: जिला चरखी दादरी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो भाई? फिफ्थ में।
0: यस अंकल, यस
1: अच्छा, कैसी चल रही पढ़ाई? अब तो छुट्टियां चल रही हैं।
0: यस अंकल,
1: अच्छा, तो क्या तैयारी करी भाई आज के लिए?
0: कविता।
1: कविता सुनाओ बेटा।
0: एक था भालू काला काला, लंबे लंबे बालों वाला कालू, उसका नाम था चेतना, काम था। एक दिन उसने देखा छत्ता, मारा पत्थर तोड़ा छत्ता, तो मक्खी भी उसी आर कार में घुस गई ले तलवार। बालू बाबा दिन जुमा कर चैन मिला पानी में जाकर।
1: शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे भाई, बहुत अच्छे, धन्यवाद। अगला फोन। हेलो हेलो
0: नमस्कार जी,
1: जी, नमस्कार, नाम बताएं।
0: कौशिक
1: नमन कौशिक, कहाँ से बोल रहे हो भाई?
0: लाठगांव से, सेकंड
1: अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड। स्कूल का काम हो गया पूरा? अच्छा, तो वह पढ़ाई में होशियार है इसका मतलब है। आज के लिए क्या तैयारी कर रखी है?
0: सुनाने के लिए।
1: कविता सुनाओ भाई।
0: जहाँ कहीं उग जाते पेड़, सबको हवा लुटाते पेड़, बरखा को बादल से छीन धरती पर ले आते पेड़, हरे भरे पत्तों से खूब पंखा सा झल जाते पेड़, दान सभी को करते पेड़, अपने फल कब खाते पेड़, जन जन की सेवा में लीन, घर घर पूजे जाते पेड़। थैंक यू।
1: शाबाश, बहुत अच्छे भाई। देखो, पेड़ जो है दूसरों के लिए ही छाया देते हैं, फल देते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं रखते। शाबाश, बहुत अच्छे भाई। अगला फोन। हेलो।
0: हेलो
1: हाँ हेलो,
0: अंकल जी, नमस्ते।
1: नमस्ते बेटे, नाम बताओ।
0: मेरा नाम पारस है सर जी।
1: पारस, कहाँ से बोल रहे बेटा?
0: सर, गांव गिवाना, जिला पानीपत,
1: अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
0: फिफ्थ।
1: फिफ्थ। क्या सुनाओगे आज ये?
0: कविता,
1: सुनाओ बेटा।
0: मेरी कविता का नाम है नीम। लहराता बलखाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम, चिड़िया कौआ तोता सबसे अपना नह जताता नीम। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम, चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम, कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम, हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम, लेता नहीं किसी से कुछ भी पर कितना दे जाता नीम। धन्यवाद।
1: शाबाश, बहुत अच्छे भाई। देखो, नीम हकीम इसीलिए कहा गया क्योंकि नीम के अंदर बहुत सी बीमारियों की दवाइयाँ छिपी हुई होती हैं। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया, अच्छे। अगला फोन। हेलो।
0: हेलो अंकल,
1: हाँ, नाम बताओ बेटा।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते भाई, नाम बताओ अपना।
0: मेरे भाई भी बात कराएगा।
1: अरे, तू तो नाम बता दे अपना पहले।
0: ऋतिक।
1: ऋतिक। अच्छा, तो अब बात कराओ भाई, या पहले तू सुना दे फिर भैया उसे सुना देना।
0: ठीक है,
1: हाँ, आप सुनाओ पहले, क्या सुनाओगे?
0: चिड़िया
1: क्या सुनाओगे?
0: कुछ
1: हाँ
0: मैं सुना।
1: हाँ बताओ बताओ।
0: चिड़िया,
1: हाँ बोलो बोलो।
0: चिड़िया बोली कुछ कुछ कुछ, कहता मुझको दो बिस्कुट, भूख लगी है खाऊंगी, खा पी कर सो जाऊंगी, दूध बनाई रखी है पर उसमें तो मक्खी है, कैसे खाऊं कैसे खाऊं।

0: बस बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। अगला फोन। हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ भाई, नाम बताओ।
1: हेलो,
0: हाँ नाम बताओ भाई, नाम बताओ।
1: मेरा नाम सिया है,
0: कहाँ से बोल रहे हो बेटा? अच्छा,
1: पिटोली गांव से।
0: कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थोड़ा रेडियो से दूर हट के बात करो बेटा, रेडियो से थोड़ा सा दूर हट जाओ, आवाज़ गूंजती है। फिर अब बताओ क्या सुनाओगे,
1: कविता।
0: सुनाओ।

0: जगमग छटा निराले पग पग छह रही वह पुण्य भूमि मेरी वह शर्म भूमि मेरी वह जन्म भूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी झरने अनेक झरते है जिसकी पहाड़ी में चिड़िया चह रही है वो मत जादू में। धन्यवाद
1: धन्यवाद भाई, बहुत अच्छे। अगला
0: भैया भी
1: अच्छा, करवाओ बात, करवा दो।
2: अंकल नमस्ते।
1: नमस्ते बेटे, नाम बताओ।
2: मेरा नाम यश है।
1: यस, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा?
2: मैं क्लास में।
1: अच्छा, तो क्या सुनाओगे आज?
2: मैं एक संस्कृत की हिंदी बताना चाहता हूँ।
1: एक संस्कृत की नहीं, मैं कई की बता।
2: दो पैरों की।
1: हाँ बता।
2: गुण जब तक गुणवान व्यक्ति के पास रहते हैं तब तक वह गुण कहलाते हैं, जब वह निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वह गुण नहीं रहते। जैसे नदी का बहता मीठा वह स्वस्थ पानी, अगर वह सागर में मिल जाए तो पीने योग्य नहीं रहता।
1: पहले संस्कृत बोलनी थी बेटा, फिर उसकी हिंदी बतानी थी।
2: गुणा गुणेशु गुणा भवन्ति ते निर्गुण से प्राप्त भवन्ति दोषासु सुवादु तोया नद्यमा साध्य प्रभवन्ति।
1: शाबाश, यानी कि पहले संस्कृत का दोहा बोलते हैं फिर उसकी उसका अनुवाद करते हैं। शाबाश, बहुत अच्छे भाई। अगला फोन। हेलो हेलो
3: हेलो।
1: हाँ, नाम बताओ बेटा।
3: नमस्ते।
1: नमस्ते भाई, नाम बताओ।
3: मन्नत है।
1: मन्नत है, कहाँ से बोल रही है मन्नत?
3: दीपालपुर से।
1: अच्छा, दीपालपुर सोनीपत।
3: हाँ।
1: अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा?
3: सेकंड।
1: सेकंड, क्या सुनाओगे आज?
3: पोयम।
1: पोयम सुनाओ।
3: एक दो बढ़ते कदम भारत माँ के बच्चे, हम नहीं रुकेंगे नहीं झुकेंगे आगे बढ़ते रहेंगे हम, एक दो बढ़ते कदम भारत माँ के बच्चे हम।
1: शाबाश, बहुत अच्छे भाई। अगला फोन। हेलो
4: अंकल जी। नमस्ते।
1: नमस्ते बेटे, नाम बताओ।
4: काव्या।
1: काव्या कहाँ से बोल रही भाई?
4: तो कासनी से, जिला चरखी दादरी।
1: अच्छा, कौन सी कक्षा की स्टूडेंट हैं काव्या?
4: फिफ्थ क्लास।
1: अच्छा, तो क्या सुनाओगे आज?
4: पोयम।
1: पोयम सुनाओ बेटा।
4: जागो भाई, किरणों ने दी ली अंगड़ाई, बच्चों तुम तो अब उठ जाओ, माता पिता को भी बुलवाओ, जय अंकल।
1: शाबाश, बहुत अच्छे भाई। अगला फोन। हेलो, तो भी देखो कितना बच्चों को एक। हेलो हेलो हेलो, लगता है संपर्क कट गया। तो भी देखो बच्चों को देखा देखी एक दूसरे का, ऐसे जब सुनाते दिखाई देते हैं, सुनते हैं बच्चे आपस में, तो हौसला बढ़ता है और उनको भी ऐसा लगता है कि हम भी कुछ सुनाएं। और सुनाने से बार बार यही बातें आती हैं कि भाई देखो बच्चों को एक सीखने की प्रेरणा मिलती है, बोलने का अंदाज़ उनका बदलता है जब वो एक फ़ोन पर और एक रेडियो पे जो हम ये सुनाते हैं, बच्चे कविताएं सुनाते हैं, कुछ भी कोई श्लोक वगैरह सुनाते हैं, तो उनकी जो वाणी है उसमें विशुद्धता आती है और साथ साथ में झिझक तो दूर होती होती है और फिर एक सीखने की एक लगन पैदा होती है कि वो उनको ये होता है कि भाई हम अगले बुधवार को कुछ ना कुछ याद करके सुनाएं। अगला फोन। हेलो, उनके मन में ये रहता है कि मैं ये याद करूं और अगला जो अपना बालक मंडली का प्रोग्राम आएगा तो उसके अंदर ये बातें मैं सुनाऊं, तो एक अलग से जो

0: एक रूपरेखा सी तैयार हो जाती है, और काम करने का जो रूटीन है, याद करने का है, वो उनका बराबर बना रहता है। तो इसलिए ज़रूरी है, लेकिन भाई छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चों से हम भी ये थोड़ा हा निवेदन करेंगे कि भाई अपना जो छुट्टियों का काम है वो ज़रूर करें। स्कूली जो काम दे रखा है अपने टीचरों ने दे रखा है, और छुट्टियां तकरीबन ख़त्म होने की उस पे हैं, क्योंकि छुट्टी जो है काफ़ी दिन हो गए छुट्टियां हुए, और जो बच्चे हैं हम देखते हैं कि भाई सारा सारा दिन खेलते रहते हैं। तो देखो पढ़ाई का भी अपना एक अलग समय निश्चित करना चाहिए बच्चों को। खेल कूद भी ज़रूरी है शारीरिक विकास के लिए। भाई सवेरे शाम है, ठंडा मौसम है, उस समय पे खेलो कूदो, लेकिन दोपहर के समय अपना जो स्कूली जो काम है, जो दे रखा है उनके टीचरों ने दे रखा है, अध्यापकों ने दे रखा है, वो ज़रूरी है करना। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक विकास, और शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होना बहुत ज़रूरी है। और एक एक खाने पीने की जो आदतें हैं बच्चों की, भाई बाहर का जो खाते हैं, देखते हैं हम कई बार कि बच्चे बाहर जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, इसके ऊपर ज़्यादा निर्भर रहने लगे हैं। जो घर का अपना देसी खान पान है उससे थोड़ा हाँ बच्चों ने दूरियाँ बना ली। भाई जो घर का अपना देसी जो खान पान है उससे जो है शरीर का भी और मन का भी दोनों का विकास होता है। क्योंकि बाहरी जो खाना है वो एक बाहरी ही तौर पर है, वो शरीर को जान नहीं देता, पोषक तत्व तो नहीं दे पाता। और जो घर का है, अपना गांव में बात करें, गांव के परिवेश की बात करें, भाई घी दूध है, लस्सी है, दही है, और गर्मियों में तो भाई दलिया है, राबड़ी है, इस तरह के बहुत से देसी खान पान हैं जो शरीर को पौष्टिकता भी दे हैं, और एक जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो भी उनमें भरपूर मात्रा में होती है। बाहर का जो खाना खाते हैं बच्चे वो जल्दी बीमार पड़ते हैं, उनमें जो है शरीर को पोषकता प्रदान करने वाले तत्व न के बराबर होते हैं। तो फल फ्रूट्स है वो भी, और जो सीजन का है, आजकल जो है सीजन में बहुत बढ़िया भाई आम हैं वगैरह जो आ रहे हैं, और घर का जो देसी खान पान है उस जैसी रीस नहीं होती। तो ये ज़रूरी है कि वो खाया जाए, पिया जाए। और बच्चों से भी ये है कि भाई देखो जिद ना लगाएं, घर पे जो खान पान है भले ही उसमें चटपटापन नहीं है लेकिन उसमें पोषकता है, और शरीर को जिन जिन विटामिनों की, पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, वो सारे के सारे उस घर के बने हुए खाने के अंदर होते हैं। बाहर का जो है खाना उसमें जीभ का स्वाद तो है लेकिन शरीर का स्वाद नहीं है। फोन देखते हैं। हेलो,
1: नमस्ते,
0: नमस्ते बेटे, नाम बताओ।
1: कृतिका खोला, गांव दड़ोली, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी।
0: अच्छा रितिका, कौन सी क्लास में पढ़ती है भाई रितिका?
1: सेवेंथ।
0: 7th में। कैसी चल रही पढ़ाई?
1: अच्छी चल रही है।
0: अच्छी चल रही है। स्कूल के काम की बातें जो हो रही थी बेटा, देखो काम भी ज़रूरी है, वो जो अपना छुट्टियों का जो कार्य है वो, क्योंकि छुट्टियां तो ख़त्म होने की कगार पर हैं अब। तो आज के लिए क्या तैयारी करी है?
1: आज एक कविता सुनाना चाहती हूँ मैं आपको। वह
0: अच्छा सुनाओ बेटा।
1: पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दो पुल की मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। बजान गाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। धन्यवाद।
0: शाबाश भाई, बहुत अच्छे हो। देखो अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनसे भी बातचीत करा करो।
1: हाँ, कल बात करेगी मेरी छोटी बहन।
0: अच्छा, कराओ बेटा।
1: हेलो
0: हाँ हेलो बेटे, नाम बताओ।
1: डिम्पी,
0: डिंपल।
1: डिम्पी,
0: डिंपी कौन सी क्लास में पढ़ती है भाई डिंपी? फर्स्ट में। तो क्या तैयारी कर रखी है आज के लिए? कौन सी कविता सुनाओगे? पोयम कौन सी सुनाओगे? हाँ बेटा नाम बताओ।
1: पोयम।

0: राजा बाजा बजा रहा, बजा बजा कर नाच रहा। राजा करता हरदम काम, वह ना करता कब आराम। जब जब रहता वह बाजा लाता गाजर आम अनार।
1: हाँ बहुत अच्छे भाई, देखो अगली बार और बढ़िया तरीके से तैयार करियो, हैं याद करना बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते हैं तो बच्चों के लिए यही भाई, देखो छोटे बच्चे जब सुनाना शुरू करेंगे ना बड़ों को देख के, तो उनमें हौसला तो बढ़ता है कि भाई हाँ हम सुनाएं, भले ही शुरू में जो है अच्छी तरीके से ना सुनाई जाए, कोई पोएम है कविता है उसमें झिझक होती है, बच्चा भूल भी जाता है, लेकिन उसकी थोड़ा हा जो बड़े हैं, बड़े उनके भाई बहन हैं, वो उसकी थोड़ी ही प्रैक्टिस करा सकते हैं, याद करवाने में मदद करवा सकते हैं। तो इसलिए अच्छी तरीके से उनको बताएं कि भाई किस तरह से बोलना है, परिचय देना सिखाएं, क्योंकि यही शुरू की पाठशाला। फ़ोन देखते हैं। हेलो
2: हेलो हेलो
3: हेलो,
1: हाँ जी, नाम बताओ बेटा।
3: नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार जी, थोड़ा रेडियो से दूर हटके बात करो।
3: सर मैं गांव रेवाड़ी से बोल रहा हूँ, जिला रेवाड़ी गांव मान से बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी आप बोल तो रहे, थोड़ा रेडियो से दूर हटके बात करो।
3: अच्छा जी।
1: हाँ
3: तो ये दो अच्छा है अपना।
1: हाँ बात कराओ, कुछ बात कराओ जी, बात कराओ।
0: अंकल जी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटे, नाम बताओ। रेडियो थोड़ा या तो मंदा कर लो, फिर आवाज नहीं सुन पा रही।
3: बोल बोल।
1: हाँ हेलो? हाँ बेटा नाम बताओ।
0: मुनीत।
1: हाँ कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा?
0: थर्ड।
1: थर्ड, क्या सुनाओगे?
0: एक पोयम सुनाऊंगा।
1: पोयम सुना दो।
0: कौन सी?
1: कोई सी भी सुना दे, जो याद हो।
0: की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, पानी डालो जी जाएगी।
1: अच्छा बहुत अच्छे भाई, शाबाश। चलो
0: हेलो।
1: हाँ हाँ नाम बोलो बेटा और सुनाओ। भाई तैयारी करवा करो पहले बच्चे की, फिर करवा करो फोन।
2: हाँ
1: जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो ऐसा है कि देखो अगर बच्चे ने बोलना है तो पहले माँ बाप भी ध्यान रखें, माँ बाप हैं दादा दादी हैं, कि वो बच्चा बोलेगा तो क्या बोलेगा, तो उसको थोड़ा तैयारी करवाओ। जो भी उसने सुनाना है, कविता है या कुछ भी है, जो बच्चा सुनाना चाहे, जो अच्छी तरीके से बोल पाए, जो शब्द हैं उनको ठीक तरीके से बोल पाए, ऐसे शब्दों का चयन करके और उनकी तैयारी कराओ। और फोन देखते हैं। हेलो
0: हेलो
1: हेलो। हाँ नाम बताओ बेटा।
0: मैं रिद्धि है।
1: रिद्धि है, कहाँ से बोल रही भाई?
0: क्लास से।
1: अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
0: एलकेजी में।
1: एलकेजी में, क्या सुनाओगे? क्या सुनाओगे?
0: पोयम।
1: पोयम सुना दो बेटा। शाबाश बहुत अच्छे भाई, देखो थोड़ा हाँ हौसला करेंगे तो बच्चे जरूर सुना पाएंगे। धन्यवाद बेटे।
0: हेलो।
1: हाँ हाँ नाम और बात करानी बेटा।
0: हेलो।
1: हाँ हाँ हेलो बोलो।
0: आप ठीक हो अंकल?
1: हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, अपनी सुनाओ, आप ठीक हो ना?
0: हाथी ना जा बहुत बड़े सुंदर लाकर काटले, मेरे घर पे आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, कुर्सी पे बैठो चिटर पटर।
1: शाबाश भाई बहुत बढ़िया, तो दो दो कविता सुना दी।
0: थैंक यू
1: बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश। तो भाई देखो बच्चे में थोड़ा हा एक बार बात करने की चशक पैदा हो जाती है ना, तो फिर याद करने की भी चशक अपने आप हो जाती है, उसको एक हौसला बनता है कि भाई बात की, रेडियो पे मेरी आवाज़ आई और मैं अगली बार और अच्छी तरीके से याद करके सुनाऊं। तो इस तरीके की बातें बहुत ज़रूरी हैं, और बच्चों को जो है थोड़ा हा घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो संस्कार ज़रूर दें, क्योंकि संस्कारों के बच्चों में कमी है।

पढ़ाई लिखाई तो बहुत हो जाती है और पढ़ते भी हैं बच्चे, लेकिन जो पुरानी अपनी विरासतें हैं उनके बारे में, जो हमारे रीति रिवाजें हैं, आपसी जो भाईचारा है, प्यार प्रेम है, उसके बारे में थोड़ा हाँ बच्चे अनभिज्ञ रह जाते हैं। तो थोड़ा हाँ ध्यान दें, बच्चों की परवरिश करते हुए भी उनके खान पान के साथ साथ उनको कुछ ऐसी बातें भी बताएं जो पौराणिक, जो अपनी बातें हैं, जिनसे बच्चे कुछ सीख सकें, अपने इतिहास को जान पाएं। क्योंकि ये जो अपनी किताबें हैं, खाली जो स्कूली सिलेबस है उसमें इन बातों का जिक्र बहुत कम मिलता है, और जो अपने गांव की जो विरासत है वो इन किताबों में नहीं पढ़ाई जाती। तो वो ज़रूरी है कि घर के में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जो भी है, बच्चों को कुछ कहानी के तौर पे बताएं कि भाई पहले ऐसा होता था, पहले इतना बढ़िया भाईचारा था और इस तरह से मैं लोगों के एक दूसरे की मदद करते थे, आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन बारे में बताएं बच्चों को, अच्छी जो आदतें हैं, अच्छी जो बातें हैं, पेड़ लगाना, भाई छोटे जो पौधे हैं उनको न तोड़ना, इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये हम शुरू में अगर बच्चों को सिखाने शुरू कर दें तो बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से सीखें भी गए और आगे उन पर अमल भी करेंगे। आगे जो बच्चे नुकसान करना शुरू कर देते हैं तो वो इसे जो शुरुआत में जो सीख उनको अच्छी मिल जाएगी, तो फिर बहुत अच्छे जो है तरीके से और बच्चों को भी समझा पाओगे, औरों को भी ऐसा कहेंगे कि भाई ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए बच्चों को, और साथ साथ में बड़े बुजुर्गों का जो सम्मान करते हैं वो तरीका भी उनको सिखाना भी चाहिए, बताना भी चाहिए कि भाई बड़े बुजुर्गों की हमने सेवा भी करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, जो बातें कहते हैं वो उनके भले के लिए कहते हैं, अच्छे के लिए कहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बड़े जो घर में कह रहे हैं या डांट डपट कर रहे हैं तो वैसे ही कह रहे हैं, बड़ों की डांट में भी प्यार छुपा होता है, ये बच्चों को ज़रूर एहसास करवाएं और उनको समझाएं। और इसी के साथ भाई, जिन जिन बच्चों ने बालक मंडली कार्यक्रम में फ़ोन किए, कविताएं सुनाई, सभी का धन्यवाद। और इसी के साथ देख लिया भाई घड़ी का ना, कार्यक्रम का समय समाप्त। बलजीत भाई ने दें इजाज़त, सारे बाण भाइया ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण संसार, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिनंदन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको सुनवाते हैं पहला गीत, आतिफ असलम और अलका याग्निक की आवाज़ों में, फिल्म किस्मत कनेक्शन से। इस गीत को लिखा है साईद कादरी ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

फिल्म किस्मत कनेक्शन से सुना भी आपने ये गीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में, फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया जतिन ललित ने।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म ओ माई गॉड से कैलाश खेर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है कुमार ने और संगीत दिया है उमेश शुक्ला ने।

सूर्यवंशम फिल्म से सुनेंगे अगला गीत कुमार शानू और अनुराधा पोडवाल की आवाज़ों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया अन्नू मलिक ने।

सोनू निगम और साधना की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना फिल्म हम तुम से। प्रसून जोशी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया जतिन ललित ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, फिल्म आओ प्यार करें से, कुमार शानू की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है श्याम राज किरण ने और संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने।

श्रोताओं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला गीत आपको सुनवाते हैं तौसीफ अख्तर की आवाज़ में, फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से। शब्द रचना है समीर की और संगीत बद किया है नदीम श्रवण ने।

कॉकटेल फिल्म से आपको सुनाते हैं अगला गीत, नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाज़ों में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने।

लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में सुनते हैं अगला गीत, फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे से। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है राहुल शर्मा ने।

कार्यक्रम में आखिरी गीत सुनेंगे फिल्म रंग दे बसंती से, एआर रहमान और महमूद असलम की आवाज़ों में। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है एआर रहमान ने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत को यहीं समेटते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत में पहली गज़ल आपको सुनवाते हैं दिनकर शर्मा की आवाज़ में।

इसी गज़ल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं समाप्त होता है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार और ठीक 9 बजे अंग्रेजी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।

0: more difficult for them.
1: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
2: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
3: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
1: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48,95,00,000 रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63,98,00,000 रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
4: We had 26 delegates from
5: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट

0: सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएँ तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
1: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना NDRF सिविल डिफेंस फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित

0: किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अम्बरीश सक्सेना।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम एक फिल्म से में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राजनीति से कुछ चुनिंदा गीत। आइए सुनते हैं अगला गीत आदेश श्रीवास्तव और शशि की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने।

कार्यक्रम में आखिरी गीत सुनते हैं शंकर महादेवन की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है वेन शार्प ने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक फिल्म से को यहीं समाप्त करते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे चर्चा का विषय आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
2: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
1: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार भी विशेष है।
2: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
1: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की, वो किस तरह से, हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा।
2: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही मतलब उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर

0: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल। तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
1: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं,
0: जी
1: तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें दो बच्चे तो पोस्ट्यूमस मतलब जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ए मतलब अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था, तो सामाजिक सेवा का ये बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा
0: जी जी
1: और वो नित्य नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। पांचवी जो कैटेगरी है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं, इवन AI से रिलेटेड, और इस
0: जी
1: प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन 6 एंट्रीज में 6 जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशंस आ रही हैं।
0: जी आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांवों से आए और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं। तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
1: अवश्य। देखिए, हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं, तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हर एक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं हैं, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
0: बिल्कुल। और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे, तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन। तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें ये भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
1: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे, और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in
0: जी
1: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चे

0: स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती हैं।
1: जी, जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं। तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
0: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम
1: बिल्कुल
0: किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं, और वहाँ के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं, और उन बच्चों को वो जहाँ भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हों
1: जी
0: तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है, तो उनको बकायदा हम जहाँ भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने, और कार्यक्रम जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार है, अभिभावक है या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जैसे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत जरूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
0: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, इसके अलावा रेलवेज पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हों, आसपास में हों, उनके बारे में नॉमिनेशन भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं जैसे आंगनबाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में, और अन्य सारे विभाग जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सकें। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सबसे यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है, तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आएं ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश

0: के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे जरूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी आगे आने वाले अवसरों पर जरूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू सो मच
0: जी। अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपने कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरु, जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉटपुट, थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहाँ से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
2: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश
0: जी
2: से हूँ और मैं पैरा एथलीट हूँ, शॉटपुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से मेरा हाथ नहीं है,
0: जी
2: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ऐसा। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी 6 से लेकर 12 तक। बचपन में बहुत लोग बहुत कुछ बोला है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हम तो बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम है इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को लाइक आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6 से लेकर 12 तक। फिर
0: जी जी
2: एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है जिसमें ओनली पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं, उसमें मेरा डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था। तो मेरा शॉटपुट जावलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कंपटीशन भी देते हैं। वैसे मैं शॉटपुट जावलिन में स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ। इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ और ऐसे मेरे पास अभी अभी तक 19 मेडल था, उसमें से 16 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना
0: बिल्कुल
2: चाहती हूँ आगे से।
0: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ। जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़े लोग उनसे मैं कब मिलूंगी ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी ऐसा मैं सोचती थी। पर मैं लाइक बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिला है, उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच्चा बहुत अच्छा लगा।
0: जी बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया। साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला, और इन्होंने खासतौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका।
3: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
0: जी तो बताएं अपने बारे में, आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि इन्वायरमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इन सब चीजों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है।
3: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर हेल्थ को प्रोटेक्ट कर कर सकूं,

0: सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में. सो दैट्स व्हाई आई वर्क ऑन दीज स्टफ एंड या आई वांट टू वर्क फर्दर ऑन इट मेकिंग मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड व्हाटएवर आई कैन डू.
1: जी तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी. ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिकें, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने?
0: राइट नाउ आई विल बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट एज ऑफ टुडे व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज टू कम अप विद द मोस्ट सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू ऑल द सोसाइटल प्रॉब्लम्स. And if future I get the chance to implement them in real life, definitely I am very eager to do that. But right now I am just focusing on building the solutions. And as of now, I am trying to focus on my studies also as I am a 10th grader this year.
1: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं.
0: It was something that I never dreamed of. And even today, आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ. बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आयशी इनसाइड मी वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू बी ऑनेस्ट.
1: थैंक यू सो मच आयशी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस अपने इनोवेशन के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया. थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू सर.
1: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश तयाल. वंश तयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर है और एक केयर गिवर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है. तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे. वंश, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा. हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया. बताएं अपने बारे में कुछ.
2: तो ये मौका मिले बहुत एक कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए. बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पे, बहुत मुश्किल था लाइफ में, है ना, कि अब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूँगा, ऐसी रह जाऊंगा. मैं मुझे रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, कुछ नहीं बना. फिर थोड़ा होप हुई एक, फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में. फिर देखा वहाँ पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना कुछ, चार पाँच महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया, वहाँ के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए. उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, छोटे बच्चा, लाइक साइबर पॉलिसी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था. तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं, कि हाँ चलो बहुत छोटा है और उसको, बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया, उसको भी हाँ उसकी हालत ऐसी है, फिर मतलब फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, कि कुछ भी कर सकता हूँ. तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सबके हेल्प करना और हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, मतलब उस बच्चे को मैंने काफी नाइक टूडे की वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी पा रहा है आराम से, तो काफी था ये समय. फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का भी नॉमिनेशन मिल जाता है सोशल वर्क में. तो मेरे सुपरिटेंडेंट सर थे, मैं सलाह देता रोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया. काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो. तो फिर उन्होंने दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा.
1: बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात है. हम आपसे और जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में जिस तरह से हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
2: जैसे ये मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा है वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए, उनका साथ ही सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ.

0: में से हो सके मतलब सेल्फ होके उन्हें हेल्प करना चाहूंगा उनकी।
1: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से। सुमन सरकार एक तबला वादक हैं, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है, और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है, तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही है। बहुत स्वागत है सुमन आपका।
2: सर आपको बहुत धन्यवाद।
1: तो सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर ये इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था, तो तभी मैं ये तबला को मतलब आसपास के जब कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था। मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे, मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे, तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो जब मैं 3 साल का उम्र का था तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है, तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गाँव में। मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री पबीर कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया, तो वहां से जानने शुरू हुआ। तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ तो मेरा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम था, कंपटीशन था, तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है।
1: बिल्कुल,
2: तो इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ। मेरा उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ। तो जो जजमेंट में था उन्होंने बोला कि मेरे फादर को उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ, तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से। तभी से मेरा जर्नी, ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है, तभी शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत। मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय संगीत का जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा
1: जी। और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
2: आज का जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है, तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं, यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर। जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
2: थैंक यू सर।
1: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक AI पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन हासिल की है, तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं, और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने AI के जरिए एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की।
3: मेरा जो एक AI सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉलिसी पेशेंट्स। ये जो AI इनोवेशन है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
1: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
3: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
1: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित

0: जिसे चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी। और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार है, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
2: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। समय हुआ है रात्रि के 10। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम मन चाहे गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में पत्र लिखने के लिए हमारा पता है मन चाहे गीत द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी रोहतक, पिन कोड रहेगा 124001। आप इस पते पर पत्र लिखकर हमें अपनी फरमाइश भेज सकते हैं और हमारी यही कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आपकी फरमाइश को हम पूरा कर सकें। देर ना करते हुए देखते हैं पहला खत हमें कहाँ से मिला है। पहला खत आया है गोला बाजार बक्सर से। भेजने वाले हैं श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित। गांधी चौक रोपड़ से हरदेव मिका, बलविंदर विरक, जतेक और मिका विरक। बठिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। ये पत्र है खुर्जा उत्तर प्रदेश से। भेजा है तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा ने। रेलवे कॉलोनी बठिंडा से आप हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। अलिका डब्वाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। आइए सुनते हैं इन सबकी फरमाइश पर लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से ये गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है RD बर्मन ने।

फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से सुना भी आपने ये गीत। कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगला पत्र हमें मिला है। पटेल नगर मलोट पंजाब से भेजने वाले हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया। आदर्श गांव बलियाली जिला भिवानी हरियाणा से ये हैं दर्शन लाल बंसल, सुदेश रानी बंसल, प्रवीण कुमार, ममता रानी बंसल, कमल कुमार गर्विश बंसल और तमन्ना बंसल। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, राजदीप रजेश, राशि रजेश और शीतल रजेश। ये पत्र मिला है नई बाज़ार बक्सर से, भेजा है राजेश कुमार केशरी, विनोद कुमार, रोहन कुमार और पंकज केशरी। मोहाली पंजाब से आप हैं बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। परी महल काजगंज से आबाद खान, नबील खान, अरफा अफरीन, इल्मा रानी, नबी हसन, असलम सैफी। प्रमिलागंज अलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से खत भेजा है बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने। आइए सुनते हैं इन सबकी फरमाइश पर फिल्म संगम से ये गीत। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम में अगला खत हमें मिला है फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से। भेजा है गुरविंदर सिंह पांडा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांडा, गोलू काकू और जे एस रामगढ़िया ने। चौधरीवास से आप हैं राजू अग्रवाल, केशव, अलक, चरण दास और रेखा। ये पत्र मिला है जतुका किशनपुर से। भेजा है आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदनी नाज ने। महादेव घाट अमलेश्वर से आप हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा।

श्रोताओं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं मनचाहे गीत आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। एक बार पता आपको फिर से बता देते हैं, मनचाहे गीत द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी रोहतक, पिन कोड रहेगा 124001। आप इस पते पर खत लिखकर हमें अपनी फरमाइश भेज सकते हैं और हम आपकी फरमाइश को आप तक पहुंचाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं अगला पत्र हमें कहाँ से मिला है। ये पत्र मिला है कैथल हरियाणा से, भेजा है पवन शर्मा, बाला शर्मा, रोहित, मोहित और भाविक शर्मा ने। दुबिया नेवादा गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। मुक्तसर से खत भेजा है बब्बू सिंह दीमान, बलजिंदर कौर, रवनीत और निशु ने। गांव मोहम्मदपुर सोतर रतिया से आप हैं जीवन सिंह बूक, शंटी बूक, सिमरत बूक, कौशल्या रानी, मनकीरत और जशन बूक। बठेना से बालकरण अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा। चटोदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सोहिद्रा, आयुषी और कृत वर्मा। ये पत्र है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, भेजा है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवाई से गुलाब दास मानिकपुरी। आइए सुनते हैं इन सब की फरमाइश पर लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म वो कौन थी से ये गीत। शब्द रचना है राजा मेहंदी अली खान की और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

अगला खत है दादरी गेट भिवानी से, भेजा है कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल कुणाल मेहरा ने। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप, सुनीता जैन और सुनीता शर्मा। गांव नथाना पंजाब से हरछिंदर छिंदा, जसवीर जसी, गगन सोनी, जसवीन रेखा, सीता और गीता। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। सुंदरखेड़ राजमाता नगर महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति, आकांक्षा, आकाश कुमार, प्रदीप और आसिफ। दादरी गेट माफ़ कीजिएगा सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। बनिया बारा छत्तीसगढ़ से रामचंद मखीजा काफिर, शंकर लाल मखीजा, राहुल कुमार, श्रीमती सविता मखीजा और उनका समस्त परिवार। बठिंडा से आप हैं प्रेम जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, तपिंदर, वरिंदर, सीमू और महेंद्र भट्टी। ये पत्र है जाखोद राजस्थान से, भेजा है शंभुदयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, पूजा खटक और दीपक कुमार खटक ने। आइए सुनते हैं आशा भोंसले और आरडी बर्मन की आवाज़ों में फिल्म जोशीले से ये गीत। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

श्रोताओं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं मनचाहे गीत। मनचाहे गीत में अगला पत्र हमें भेजा है कोली नांदेड़ से। भेजने वाले हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार और साईं गायकवाड़। बिलराम कीट कासगंज से आप हैं एम असलम सैफी, जुबेन निशा बेगम, अकरम सैफी और आबाद खान। राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर प्रदास गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसमी गुप्ता, संगीता, रुद्र और विधि गुप्ता। ऐशबाग लखनऊ से ये हैं मुकेश गुप्ता, कुसुम,

गुप्ता और पंखरी गुप्ता, राजनगर, गांधी चौक कांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली, सूर्यांशी, कोमल, मेनका, माधवी, साध्वी, तन्मय, राज और गुनगुन। अगला पत्र हमें मिला है अंबाला से, भेजा है रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश, नमन, सिमरत, गुरकीरत, गुरशब्द राहुल ने। गांव गोविंदगढ़ मांझीवाला राजस्थान से ये हैं राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला टुटेजा, गुड्डू, जीनू, मन्नू, आदित्य, भूमि, राखी, अमृत वड़वाल, शिव सेठी, करणपुरी और स्माइल टुटेजा। गांव मटोर जिला कैथल से रामदिया संजय टाक, अजय टाक, विजय, कृष्ण, गौरव, मुस्कान, पायल, तमन्ना, नीलम बोध सिसाए, मीना बोध सिसाए और कृष्णा रामफल। आइए सुनते हैं इन सब की फरमाइश पर आंधी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा गुलजार ने और संगीत दिया राहुल देव बर्मन ने।

कार्यक्रम में अगला पत्र है न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से, भेजा है सुरेंद्र खुराना, सुमित सुरभि, अनीता और राजीव ढींगड़ा ने। डब्बाली हरियाणा से आप हैं जेके बोकलिया, सुनीता, संजय, अनिल, मीनू बोकलिया। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोतले, आरती जोतले। करनाल से नरेंद्र तनेजा, देव कोमल और शिवम तनेजा। डोरगांव छत्तीसगढ़ से पत्र भेजा है राजपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये ने। दिल्ली शहर मौरीगेट से ये पत्र भेजा है कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार ने। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। चकला बाजार समाना से पुष्पा राज खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल और समस्त उनका परिवार। डाबर कॉलोनी भिवानी से रमेश सिवानीवाल, सौरभ सिवानीवाल और रमेश वर्मा। ये पत्र है गांव बिरौली जींद से सुरेंद्र सांगवान, अंकित सांगवान और सचिन सांगवान ने भेजा है। योग नगर पंजाब से नरेंद्र मेहता, वरेंद्र मेहता, गिरिराज मेहता, हनी मेहता और सिमरत मेहता। आइए सुनते हैं अबोध फिल्म से ये गीत सुरेश वादकर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है रविंद्र जैन ने।

अगला खत है महागौरी मंदिर खजूरी खास दिल्ली से, भेजा है पृथ्वी सिंह नेंगी, सौरभ सिंह नेंगी, गौरव सिंह नेंगी, मिट्टी और कुहू ने, कलेर बिहार से ये हैं मोहम्मद आसिफ खान, निकहत परवीन, आरजू, अरमान, आलम और तस्नीम, रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, ये पत्र है अमरपुर पेंडरा से दीपक, रोशन, वंशीलाल, रेखा, श्रीवास्तव, श्वेता देवी, सुरुचि, दिशा और लंबी श्रीवास्तव ने भेजा है, नयापारा भिराई से बसंत सूर्यवंशी, सरोज, चंद्रकांत, प्राची, टीयूषी सूर्यवंशी, मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर और रौनक दीप कौर, वडाली देशमुख मध्य प्रदेश से रजेश गोबरखेड़े, शिव सागर, इंदिराबाई और सुनैना, केलंगा से आप हैं सुंदरपाल कौशिक, अभी, नीशु देवू, पीहू और पाखी कौशिक, पुणे से पंकज वडोदे, आर्या, आदि, शलेश, सोनम, धनुषपुरी और बीटे वडोदे, पिरदा कोरासी से रोहित साहू, हरीश कुमार, पुष्पलता और राधा साहू। आइए सुनते हैं खिलौना फिल्म से ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

खिलौना फिल्म से सुना भी आपने ये गीत। कार्यक्रम में अगला खत जो हमारे हाथ में है वह आया है साउथ एक्सटेंशन और भेजने वाले हैं गुरमीत सिंह मिता, महोबा बुंदेलखंड यूपी से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न और गौरव, बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज। ये पत्र भेजा है जरूपुर उत्तराखंड से मोहम्मद रेहान, शमरीन, माहिरा नूर ने, पत्रोड़ा अनूपगढ़ से मंगल जनागल, रोशनी, अंकुर, इंदु और सुनील, इंदौर एमपी से वंदना मराठा भाऊ, गणेश, कार्तिक भाऊ, परी, संजना, मालती, प्रयाग चौधरी, ललिता और नारायण। आइए सुनते हैं बुनियाद फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम में आखिरी पत्र जो हम शामिल करने जा रहे हैं वह आया है गांधीबाग अकोला से, भेजा है रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर ने। फतेहाबाद से बिट्टू मोहरवाला, गगन अमरपुरी, युवराज और भूविक। चरखी दादरी से जगनेश सांगवान। करनाल से आप हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगनानी, जगमोहन और प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, सोनिया, विपाशा शर्मा, नरेंद्र तनेजा, मीनाक्षी तिवारी, किरण ठाकुर, जग्गी दुआ और प्रेमलता। बगावत यूपी से एहसान अली। सच्चा खेड़ा से वेद बिहारी। तोरनाला वाशिम से सुखदेव राहुत। भिलाई छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, दीपक, प्रमिला और ज्योति। शालर पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मेहर जद्दीन, केसरदीन और नजमदीन। मटोर से ये खत भेजा है रामदिया, नीलम, अजय, विजय, तमन्ना, पायल, रामफल और धर्मवीर ने। आइए सुनते हैं फिल्म साथ साथ से ये गीत जगजीत सिंह और चित्रा की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम मन चाहे गीत को यहीं समाप्त करते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। रात के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार और ठीक 11:05 पर अंग्रेजी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से

पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: but affected areas to remain cautious. In a social media post, Mr. Rijiju urged the people to stay updated through official channels and follow all safety advisories. In the FIFA World Cup, Canada will take on Switzerland in Group B match at Vancouver in Canada tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. IST. In another fixture, Bosnia and Herzegovina will face Qatar at Seattle Stadium in Washington. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। समय हुआ है रात्रि के 11:10। अब हमारे आज के प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर कल प्रातः 5:55 पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।